0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोज हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 03201800003।
0: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो। जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई।
2: हाँ नहीं अचो, मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601000।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: इस्लामाबाद जे पी एम जी अस्पताल जे गायनी वार्ड में बाहि वाके सबब इंतजामी न

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद अम्बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 03073592120।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03008-5569।
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सूमर ते सुबह 10 का शाम 5 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आइन हर जुमे छंछर ए आचर ते बगैर फीस जे चेकअप कयो वींदो याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ए औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लए 03011 96 851।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐ रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आहे
2: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 ऐ 02424601000।
4: उम्मीद के दिए जलते हैं
5: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजह स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 03000002724 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453।
6: अस्सलाम वालेकुम अदा।
7: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा।
2: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
6: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
7: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
7: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
8: 03013992836।
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।

बार वे जोड़ी गे निंगर फोत के त्राही बार उर्ली में मुबतला गोठ अकबर गबोल में उर्ली जी बीमारी पखेड़ वही उर्ली में मुबतला सालन जो शाजे वलिद मुनवर गबोल फोत थी वो केतराई बार बीमारी में वरतल सेहत खाते नोटिस न वरतो गोठाणा परेशानी जो शिकार।

0: किसी दूसरे के नाम पर जायदाद खरीदना एक संगीन जुर्म है जिसे बेनामी ट्रांजैक्शन कहते हैं। ये जुर्म कई शक्लों में हो सकता है।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश, रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आहिन।
3: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालानी।
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372-0242-460100।
5: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाए 0302018-00003।
6: अस्सलाम वालेकुम अदा।
7: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा।
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
6: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
7: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
7: राब्ते लाए हाकिम अली जिसकानी,
8: 0301-399-2836।
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

चाहत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को, चाहत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। चेहरा मीठी सी आवाज, मासूम से दिल, स्वीट सी हंसी, परफेक्ट पर्सनालिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं आरजी रुखसार सिंध की आवाज। हाउ आर यू, कैसे हैं आप? आई होप सो कि जी जहां जहां भी मौजूद है बिल्कुल टिप टॉप से कूल, एक साउंड एकदम स्ट्रांग हल के साथ मुझे सुन रहे हैं। जहां जहां भी मौजूद है बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद है और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरे पूरे तैयार है, पूरे पूरे एक बजे तक। सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, जो कि आप सुनते हैं अभी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 टू 1 पीएम आपका मेरा साथ रहता है। और ये खूबसूरती बड़ा खूबसूरत से साथ जो कि आज भी जारी है सारी रहेगा पूरे पूरे एक बजे तक। तो प्रोग्राम में अगर हम सबसे पहले वक्त की बात करते हैं तो जी 11:25 पाकिस्तान के मियारी बात तमाम तो लोग घड़ियों में बज रहा है। इसके अलावा वो लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में है, ट्रक में है, रिक्शा में है, कार में है, बाइक पे है, जिस पे भी जहां भी जा रहे हैं आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी, बट अलाउ द नेवर अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए, ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। खुदा खैरियत मौजूद आज तो अकेले खुदा खैरियत मतलू तो मेरी आवाज गली और शोबारों, शहरों शराहों, वादी और पहाड़ों, दरियाओं और मरगुजारों, घरों और बाजारों, छोटी बड़ी कारों, मेरे पुरस्तारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है। तमाम सुनने वालों को, चाहने वालों को, मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे जिंदगी गुलजार है। प्रोग्राम में इंक्लूड करने जा रही हूँ प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना, और इस गाने को हम सुनेंगे, एंजॉय करेंगे, गाने के साथ आगे चलेंगे और बताएंगे कि क्या होने वाला है। स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है।

0: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सूमर ते सुबह दहे का शाम पंजे वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। हर जुमे छंछर ए आचर ते बगैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो। याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी। माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो। गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ए औरतुन में वजन जो न वधण उन सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो। राबते लए 0301-9196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69।

0: हेलो, कॉल लग गई, पता नहीं चल रहा इनको. ओके, 0300 11 34 88 के ऊपर एक और कॉलर लेते हैं और चेक करते हैं कौन है कहाँ से. हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से. नदीम अहमद, कैसे हैं? ठीक हैं, पहली दफा कॉल कर रहे हैं.
1: नहीं, आपका प्रोग्राम सुनता रहता हूँ.
0: सुनते रहते हैं, कैसा लगता है?
1: अच्छा लगता है.
0: अच्छा लगता है, जबरदस्त जबरदस्त. अच्छा, मुझे बताएं कि गाना सुनाएंगे?
1: नहीं नहीं, हमने गाना नहीं सुना, आप अपने पसंद से लगा लें.
0: ओके, और कुछ कहना है?
1: बस आप खुश रहे.
0: थैंक यू सो मच. हाफिज़, 0300 11 34 88 इसके ऊपर कॉल करेंगे. नेक्स्ट कॉलर रिसीव करेंगे और चेक करेंगे कौन है कहाँ से. हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम
1: बाजी, कैसी हो? ठीक हो? खुश?
0: मैं ठीक हूँ. कौन बात कर रहे हैं?
1: बाजी, मोहम्मद आलम बात कर रहा हूँ.
0: मोहम्मद आलम, पहली दफा कॉल की है
1: जी? एक बार कॉल पहले लगी.
0: चलें, जबरदस्त प्रोग्राम सुनते हैं तो गाने सुना दें.
1: हाँ, प्रोग्राम सुनता हूँ बाजी, गाना मुझे नहीं आता.
0: गाना नहीं आता? ओके, मैं सुना दूँ?
1: हाँ जी, बिल्कुल सुनाओ.
0: ओके, फिर अपने बहुत सारा ख्याल रखें.
1: हमारा गाना जो है ना, मेरे पसंद है वो सनी मेहर वाले पुल पे बुलाओगे,
0: ये वाला सुना दूँ?
1: हाँ जी जी.
0: तो थोड़ा सा गा के तो सुनाए ना.
1: बस यही आता है, जैसे सुनाया तुमने गए, इतना ही आते है जी.
0: चले, जबरदस्त जी. और
1: याद होते अल्लाह हाफिज.
0: अल्लाह हाफिज, थैंक यू. और इसी के साथ नहर वाले पुल वाला गाना, नहर वाले पुल वाला गाना हम प्ले कर रहे हैं. सो ये नहर वाले पुल वाला गाना आ चुका है जी हमारी प्लेलिस्ट में, तो सुनेंगे, एंजॉय करेंगे, थोड़ा सा आगे से प्ले करेंगे मेरे ख्याल से.

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569। जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते। खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ड जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल टू पर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए, आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

Okay, very nice. Thank you so much. बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना. बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना. Thank you so much. हाफिज. और गाना प्ले कर

0: एक और कॉल हम रिसीव करिए. हेलो
1: हेलो अस्सलामुअलैकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम उस्मान किशोर, कैसे? ठीक ठाक
1: शुक्र है. लगा सुना?
0: मैं भी बहुत अच्छी. गाना वाना लाए हैं कोई अच्छा सा इतने दिनों बाद?
1: बिल्कुल लाया हूँ. ओएसटी है.
0: ओके सुनाइए.
1: ओएसटी है बस तेरा साथ हो.
0: बस तेरा साथ हो.
1: हाँ ये ड्रामे का नाम है.
0: ओके ठीक है.
1: मुझे इश्क का हो

0: देखा मिलो, बस तुम ही देखा करो, बस तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा नाम लो।
1: ओके, वेरी नाइस। और कुछ कहेंगे?
0: थैंक यू,
1: थैंक यू सो मच। बहुत सारा ख्याल रखें अपना। स्मार्ट किशोर, अल्लाह हाफिज़।

ओके जी, स्मार्ट किशोर का हम गाना प्ले करने जा रहे हैं. और जब मैंने ये ओएसटी सर्च किया है ना, तो मेरे पास दो तीन तरह के ओएसटी आए हैं इसी ड्रामा के. तो अब देखते हैं कि ये एग्जैक्ट वो ही है जो स्मार्ट किशोर ने हमें सुनाया था या कोई और है.

0: सखर सिंध का राज दुलारा शहर,
1: जिसे चूमती है दरियाए सिंध की हर लहर।
0: सखर के हर अंदाज से बसी आवाज, जीए सखर FM 88, सखर की आवाज,
1: जीए FM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अब आप सुनेंगे जीए FM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: सिंधी नुमाइंदगी की खामोशी से भी सवाल बरकरार, जरीन से चवना है साहब ने सिंधी नुमाइंदो वे अरसे का ऑफिसी न अची रो है। खिते में अमन के क्याम लाए पाकिस्तान जो कोशिशों जारी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान जो दौरों करें खिते की सूरत हाल से ईरानी क्यादत जो गाल आब नायर मुस्त भी गाल पर नई तर्जुमान ताहिर हुसैन अंदरा भी है तो खिते में जारी छिकताण से फील्ड मार्शल ईरानी क्यादत से तफसीली गाल बोल कई है। पाकिस्तान खिते में छिकताण के खात्मे लाए विचोबर के मुल्क पाकिस्तान अमेरिका में छिकताण के खात्मे लाए मुस्बत किरदार अदा कर रो है। कतरी वजीर आजम ईरान के अहम दौरे से अज तेहरान पहुंचन। ईरानी सियासी अस्करी क्यादत से मुलाकातू कह अमेरिका ईरान विच में जारी छिकताण के खात्मे समेत खिते की सूरत हाल से गाल आबन हरूस की बहाली वो मामलो भी गौर हेठ। सिक्योरिटी फोर्सिस जो केपी के बलूचिस्तान में दहशतगर्दन खिलाफ कार्रवाई 11 दहशतगर्द मार वाया। सिक्योरिटी जरिये मूजिब केपी के इलाके बनून लाडा में 7 दहशतगर्दन के जहनम बेड़ो किया। बलूचिस्तान के इलाके खुदगार में ऑपरेशन दौरान 4 दहशतगर्द मार वाया। दहशतगर्दन जो एक ठाक भी धातु वजीर आजम शहबाज शरीफ पारा कामयाब ऑपरेशन से फोर्सिस के भेटा पेश। शहबाज शरीफ चवाए तो दहशतगर्दी खिलाफ जंग में कौम फोर्सिस से गर्द भी थल है। नवाज लीग पारा इफ्तखार गिलानी के आजाद कश्मीर को वजीर आजम बनाने जो फैसलो। वजीर आजम हाउस में मुशावरत बाद इफ्तखार गिलानी के वजीर आजम बनाने जो फैसलो किया। बैरिस्टर इफ्तखार गिलानी टेक्नोक्रेट सीट से चूंड वो आजाद कश्मीर के नए वजीर आजम की चूंड सुंदी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में मुकर्रर सऊदी सफीर की अलविदाई मुलाकात। वजीर आजम सऊदी सफीर के जिम्मेवारियों बेहतरीन अंदाज में निभाने से मुबारक दिनी। शहबाज शरीफ चो तो खिते में अमुन इस्तेखाम के क्याम लाए सऊदी किरदार सारा जोगो है। पाकिस्तान ए सऊदी अरब जहा लागापा भी मजबूत थिया है। सिंध हाई कोर्ट में मंशात केस में गिरफ्तार बिन जणन की जमानत वाली दरख्वास्त बुधनी। जांच ऑफिसर की पेश न थियण से अदालत पारा कावड़ जो इजहार। थाने के जांच ऑफिसर के हथकड़ियों हणी अदालत में पेश करण जो हुकुम। अदालत में पेश थियल अहलकार बुधायो तो जांच ऑफिसर के वठण वो हुयस घर मौजूद न हो। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलोड़ो रिमार्क्स डींदे है तो जांच ऑफिसर के पेश न कयो वो तो ASI के जेल मोकलो वो। वारे मेजरी पानी की कोर्ट खिलाफ JUI के सद से एहतजाज। फाजल राव चौक से कुरान पानी कर एहतजाज जो धरणो वो है। वारे तालके में पानी को खत्म करण जो मुतालबो किया। अखबारों है तो वारे तालके की शाख में जरी पानी न पौतो तो असा वारे के हर शाख से कुरान शरीफ जहा खत्मा पढ़ी हुकुमरान के खिलाफ एहतजाज कंदा रहंदासीं। जरवार वेझो उड़ी वगे नींगर फौत केतरा ही बार उड़ी में मुबतला। गोठ अकबर गबोल में उड़ी की बीमारी पखिड़ी वही। उड़ी में मुबतला बिन साल शाहजे वलिद मुनवर गबोल फौत केतरा ही बार बीमारी में वरतल। सेहत खाते नोटिस न वरतो गोठाना परेशानी जो शिकार। बलोचिस्तान के इलाके सोबतपुर वेझो फुर मजामत सब्जी विक्रो कंदड़ पोरेत गोलू हणी कतल। डेरा मुराद जमारे के इलाके हासिलवाल लग हथियारबंदन न्याज खाणी के जर्गमाल बनाया। मजामत करण से हथियारबंद पोरेत के गोलू हणी कतल कर मोटरसाइकिल रकम खड़ी फरार किया।

पीर जो गोठ में वधंदड़ बदमनी खिलाफ़ शहरन जो रैली ऐं धरणो शहरन पीर गोठ में वधंदड़ बदमनी खिलाफ़ शहरन रैली कढी राजधी गेट वटि धरणो ऐं एहतजाज कंदड़ जो चवण आहे त पीर गोठ शहर में बदमनी चोट चढ़ी वई आहे। ॾींहं ॾिठे शहरन खां फुरूं थी रहियूं आहिनि। द्वारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे अमन बहाल करायो वञे।

0: उबावड़ो वेझो घर जी भित किरण सबब निंगरी फोत वी जख्मी गोठ मुको डहर में घर जी कच्ची भित किरण सबब जैनब दायो फोथी वही रशीदा दायो जख्मी थी पई।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 0320180003।
3: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300338569।

0: कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा।
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 0301-399-2836
0: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1550-724।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

0: ज़िंदगी वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं ज़िंदगी गुलज़ार है. मुझे कहता है आज ये रुखसार आपको मेरे साथ पूरे पूरे एक बजे तक का है और आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं प्रोग्राम में. इसके अलावा जी ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और वापस आने के बाद हमारा एक अदद सेगमेंट होता है हमेशा की तरह एवरी थर्सडे एंड वेडनेसडे को जैस हरा भरा पाकिस्तान. और हरा भरा पाकिस्तान जिसको सपोर्ट करता है हैप्पीनेस फाउंडेशन ट्रस्ट पाकिस्तान, जिसके नामों से आप ये सेगमेंट सुन रहे होते हैं. और हमारे साथ हर सेगमेंट में डिफरेंट स्पेसिफिक गेस्ट मौजूद होते हैं. तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, जो हमारे साथ लाइनअप हैं, वो हैं जी असद बलोच. और असद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त लाइन पे एग्जैक्टली लाइव. इनको कहेंगे खुश आमदीद एंड अस्सलाम वालेकुम.
1: जी वालेकुम सलाम. मैं मुख्तार, मैं बहुत ही मशगूल आप सबका और JFM नेटवर्क का और सुनने वाले सारे सामीन को मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम.
0: ओके जी वालेकुम अस्सलाम. सबसे पहले असद बलोच आपको वेरी वार्म वेलकम टू यू कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे इस सेगमेंट में.
1: थैंक यू सो मच मैम.
0: अच्छा असद बलोच, आज जिस बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं वो है एजुकेटिंग चिल्ड्रन अबाउट ट्री प्लांटिंग एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. तो आप हमें इस हवाले से ये बताइएगा कि दरख्त हमारे लिए क्यों अहम है.
1: जी उस्ताद साहिबा, एक बेहतरीन सवाल है और आज का टॉपिक की भी एक बहुत ही अहम है. तो देखिए, दरख्त जिंदगी का बुनियादी हिस्सा भी है और दरख्तों की अहमियत हम सिर्फ महसूस करते हैं और ये खामोशी से फायदा दे रहे होते हैं हमें. जैसे देखा जाए कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए, माहौल को साफ भी रखना है, तो इस सारी चीजों के अंदर दरख्त का एक अहम किरदार है. बढ़ती हुई गर्मी की शिद्दत को कम करना चाहिए तो या फिर परंदों और जानवरों को पनाह भी चाहिए तो हमारे माहौल को खूबसूरत बनाना भी चाहिए. इस सारी चीजों के लिए जो अहमियत रखता है वो हमारा दरख्त रखता है. तो दरख्त हमारे लिए बेहद अहम जरूरी है, आलूदगी की गर्मियों से भी रोकता है. तो मैं ये कहूंगा कि भाई दरख्त लगाना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया इस वक्त.
0: जी जी कंटिन्यू कीजिएगा.
1: मैं इस बात को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू रख रहा हूँ एक इस चीज पे कि भाई आज का टॉपिक जैसे हमारा कंसर्न है बच्चों के साथ शिजरकारी के बारे में तैलीम देना क्यों जरूरी हो जाती है. तो बच्चों को सिर्फ बताना काफी नहीं होता, दरख्त अहम है बल्कि उन्हें ये अमली तौर पे उसका हिस्सा बनाना होगा. अभी कैसे बनेगा दरख्त के बारे में हम कैसे उन्हें आगाही देंगे, तो इस पे देखें मेन जो अहम किरदार होता है ना वो असातिज़ा किराम का होता है जो स्कूल के अंदर उन्हें गाइड करते हैं. अब बच्चा उसको कैसे सीखेगा, बच्चा जो सीखता है वो एक तो अपने पेरेंट्स से सीखता है जो उनके साथ घर में होते हैं, दूसरा उनके असातिज़ा से सीखता है जो उनके साथ होते हैं. अब मैं ये कहूंगा कि भाई स्कूल्स के अंदर भी हम इस तरह से पौधे लगाएं और उन पौधों को लगाते वक्त उन बच्चों को भी साथ में लेके जाएं ताकि उन्हें हम ये चीजें करवाएं कि भाई ये पौधा हमने लगाया, इसको पानी भी देना है, इसकी देखभाल भी करनी है. और जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होता जाता है और बच्चा उसकी देखभाल करता जाता है तो इस तरह से उनके साथ एक ताल्लुकात जो है वो बढ़ जाते हैं, मतलब एक जज्बात जो उनके होते हैं वो ज्यादा अटैच हो जाते हैं और बच्चा फिर दरख्त की साइड पे और पौधों को बढ़ाने में अपना किरदार अदा करता है.
0: बिल्कुल ऐसा ही है जी. और दरख्त वाकई बहुत अहमियत रखते हैं और आज हम इसी बारे में बात कर रहे हैं कि अपने बच्चों को हम आगे चल के इस बारे में किस तरीके से आगाही दे सकते हैं. अच्छा असद बलोच, आप हमें ये भी बताइएगा कि बच्चों को शजरकारी के बारे में तालीम देना क्यों जरूरी है.
1: मैम देखिए, अगर हम बात करें कि हमें माहौल एक साफ सुथरा माहौल चाहिए, वैसे तो हम पढ़ाई के हिसाब से भी देते हैं ना, लाइब्रेरीज वगैरह हर चीज बना के देते हैं, लेकिन उसके अंदर जब हमें ऑक्सीजन चाहिए या साफ सुथरा माहौल चाहिए, सांस ले रहे हैं हम, तो इन सब को फिर बेहतर बनाने के लिए भी दरख्त का ही किरदार होता है. तो साफ सुथरा माहौल बनाने के लिए हमें उन बच्चों को वहां से साथ अटैच करना पड़ेगा.
0: ठीक है, आपको मेरी आवाज आ रही है.
1: जी जी मैम बिल्कुल आवाज क्लियर है.
0: ओके जी असद बलोच, हमें ये बताइएगा कि शजरकारी से माहौल पर क्या मुस्बत असरात मुरतब होते हैं.
1: देखिए मैम, इस वक्त हम अगर बात करें कि गर्मियों में काफी ज्यादा शिद्दत हो चुकी है और क्लाउड चेंजेस जो है वो उसके ऊपर भी अगर हम देखें तो काफी चीजें आ जाती है। लेकिन शजरकारी एक, हम तो ये कहते हैं कि भाई एक छोटा सा पौधा है लगा दो, आज लगा दिया कल उसको नहीं देखा बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। लेकिन एक पौधा जब वो बड़ा होता है तो हमारी गर्मी की जो शिद्दत है उसको काफी हद तक कम कर देता है। अच्छा, होता क्या है, मैं इस चीज के ऊपर एक रियल बात कर रहा हूँ कि ज्यादातर जब हम सपोर्ट करते हैं किसी को भी कम्युनिटीज के अंदर पौधे लगा रहे होते हैं, तो काफी लोग सिर्फ उसका काम मतलब तस्वीरें बनाने तक होता है कि हमने भाई पौधे लगा दिए अब बातें खत्म होगी। तो बात पौधे लगाने तक नहीं है, तस्वीर बनाने तक नहीं है, असल कामयाबी तब है जब वो पौधा बड़ा होकर एक मजबूत दरख्त बन जाए।
0: बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जहाँ तक देखा जाए हमारे तालीमी निज़ाम की अगर हम बात करते हैं, तो जिस तरह आपने कहा कि आजकल के दौर में शजरकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, तो हमें चाहिए मेरे ख्याल से कि हम अपने बच्चों को स्कूल की तालीम में भी ये तालीम दें, और जो स्कूल के अंदर एक तालीमी निज़ाम होता है, एक निसाब होता है, उसमें भी ये चीज़ हम इंक्लूड कर दें। तो आप मुझे ये बताइए कि स्कूल में बच्चों को माहौलियाती शऊर जो है कैसे दिया जा सकता है, उनमें कैसे शऊर पैदा किया जा सकता है।
1: जी बिल्कुल रुखसार साहिबा, इसमें देखिए स्कूल इस सिलसिले में तो बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल कहूँ कि अगर बच्चों को क्लासरूम में माहौल के बारे में पढ़ाएं, लेकिन उनके साथ साथ उन्हें अमृत सरगर्मियों में भी शामिल करें, जैसे क्लास में अगर चंद पौधे खरीद करके कुछ असातिज़ा मिलते हैं या फिर बच्चे मिलते उन्हें पानी दें रोजाना के बुनियाद पे, और फिर एक और चीज भी हो सकती है कि एक ग्रीन कॉर्नर बनाए और उस बच्चों की जिम्मेदारी रखी जाए कि भाई बारी बारी आप सबने इनकी देखभाल भी करनी है। तो इस तरह से देखिए तालीम अमली जिंदगी से जुड़ती है, तो बच्चे उसे ज्यादा बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं। तो इसी तरह से हम ये एक्टिविटीज करेंगे तो बच्चे ज्यादा इनसे थोड़ा लगाव भी रखेंगे। जैसे कहते हैं कि भाई इलम के समंदर में अमल का एक कतरा अफजल होता है, तो भाई सिर्फ पढ़ना नहीं है, हम अगर उसको अमली तौर पे भी लेके आते हैं तो बिल्कुल बच्चा उससे सीखना शुरू करता है।
0: बिल्कुल जी, वेरी वेल सेड। एंड मुझे ये बताइएगा, क्या सिर्फ दरख्त लगाना काफी होता है या इनकी देखभाल भी उससे ज्यादा जरूरी होती है?
1: बिल्कुल, ये बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। मैं यही कह रहा हूँ कि काफी जगह ऐसा होता है कि पौधे लगा दिए हमने बात खत्म हो गई, तो भी बात पौधे लगाने तक तो काफी नहीं है, असल काम तो उसके बाद शुरू होता है। हमें उसे पानी भी देना है, जानवरों से बचाना भी है, उसकी हिफाजत भी करना है, उसे वक्त भी देना है। तो ये एक पौधा बिल्कुल ऐसे टाइम रहता है जैसे एक बच्चे को हम पाल के बड़ा करते हैं। तो हमेशा मैं ये समझता हूँ कि पौधा लगाना एक वादा है और उसकी देखभाल उस वादे को पूरा करना है।
0: ओके जी, अच्छा आजकल के दौर में अगर देखा जाए तो आप हमें ये बताइए कि बच्चे माहौलियाती आलूदगी को कम करने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं?
1: हाँ, ये बेहतर क्वेश्चन है, इस पे थोड़ा सा मैं एक और टॉपिक से कंसर्न करूंगा और एक और चीज भी इसके अंदर है। मैं देखिए अगर देहाती लाइफ को हम देखें तो वहाँ पे माहौलियाती आलूदगी बिल्कुल कम होती है। अब शहर की निस्बत में या फिर बड़े बड़े जो शहर है उनकी निस्बत में छोटे छोटे शहरों को अगर देखा जाए तो वहाँ पे बीमारियां कम होती है, आलूदगी कम होती है। अब आलूदगी का जो ज्यादा बढ़ना है वो बड़े बड़े सिटीज के अंदर है, क्योंकि वहाँ पे एक तो फैक्ट्रीज ज्यादा है, अब वहां से पैदा होने वाली आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए फिर हमें एक जो अहम किरदार होता है ना वो दरख्तों का होता है। तो वहां पे दरख्तों को लगाने के बजाय काटा जाता है ज्यादातर। तो इस तरह से मैं ये समझता हूँ कि अगर बच्चों को हम इस चीज के अंदर लेके आते हैं और बच्चे भी ये अपना किरदार अदा करते हैं तो वही दरख्त जब बड़े हो जाते हैं तो फिर माहौल के अंदर भी एक अच्छा एनवायरनमेंट पैदा हो सकता है।
0: बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा हमें ये बताइएगा कि अभी रिसेंट अगर हम बात करें इस दौर की जहाँ हमें दरख्तों की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो दरख्तों की कमी हमारे लिए कितना बड़ा मसला है इस वक्त?
1: मैम बिल्कुल देखिए, नई जो बीमारियां हैं, स्किन के मसाइल हैं, वायरसेस हैं या सांस की कमी है, इस तरह के ये मसाइल क्यों पैदा हो रहे हैं? क्योंकि जो चीज इन चीजों से रोक रही है उसको हम खत्म कर रहे हैं। इन सब की वजूहात दरख्तों की कमी है। अगर हम दरख्त इस तरह से काटते जाएंगे तो ऐसे समझे कि एक तरफ दरख्त कट रहे हैं तो दूसरी तरफ इस तरह के मसाइल जो है वो बढ़ रहे हैं।
0: ठीक है, अच्छा जिस तरह आपने बात की कि बच्चों को एजुकेट करना चाहिए शजरकारी से रिलेटेड, तो आप हमें ये बताइए कि जिस तरीके से हम बच्चों को इस तरीके से एजुकेट करते हैं प्लांटिंग के हवाले से, तो उनको कौन एजुकेट करेगा, मेरा आपसे ये सवाल है. मतलब उन लोगों को हम किस तरीके से शऊर दे सकते हैं जो हमारे बच्चों को आगे चल के शऊर दें, उन टीचर्स को, उन असातिज़ा को, उन पेरेंट्स को जिनको इतनी ज़्यादा आगाही अभी तक भी नहीं है आज के दौर में, तो ये हमें बताइएगा प्लीज़.
1: जी मैम, ये रियली एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है. अब देखिए, जैसे इस वक्त HFT काम कर रही है, और HFT ये नहीं है कि सिर्फ ही पौधे दे रही है या फिर इस तरह से काम कर रही है, वो सेशंस भी करवाएं. मतलब HFT जैसे सेशंस करवा रही है, तो जो भी ग्रीनरी के ऊपर काम कर रहे हैं या दरख्तों के ऊपर काम कर रहे हैं, तो सबसे अहम बात ये कि वो सेशंस रखें, उन पेरेंट्स को उन असातिज़ा के साथ ऐसे सेशंस रखें, पहले उन्हें आगाही दें कि भाई इस चीज की अहमियत क्या है हमारे मुआशरे के अंदर. और जैसे उनको अवेयरनेस आएगी, तो फिर वही मैसेज हम कन्वे करते हैं उन असातिज़ा और पेरेंट्स के थ्रू उन बच्चों तक. फिर इस तरह से उन बच्चों को भी आगाह किया जाए, भाई ये मैसेज हमारा आप कम से कम 10 बच्चों तक अगर पहुंचाते हैं, तो इस तरह से मेरे ख्याल में ये मैसेज हमारा काफी हद तक कन्वे भी हो सकता है.
0: बिल्कुल ऐसा ही है. अच्छा असद बलोच, टाइम भी बहुत लिमिटेड है, तो आप हमें ये बताइए कि लास्ट में वो बच्चे जिनको हम प्लांटिंग के लिए एजुकेट करना चाहते हैं, वो वालिदैन जो अपने बच्चों को प्लांटिंग के लिए एजुकेट करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे?
1: जी मैम, बिल्कुल लास्ट में ये पैगाम हम जरूर उनको देना चाहते हैं जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं. तो भाई देखिए, एक सिंपल सी पोएट्री है, अफराद की आंखों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा. तो हमें सबको मिलके इस मुआशरे को बेहतर बनाना है, माहौलियाती तहफ़ के लिए अपना किरदार अदा करना है. और मैं तो ये कहूँगा कि भाई आप लोग एक एक पौधा लगाएं, अपने लिए लगाएं, अपने आने वाली नस्ल के लिए लगाएं, और इस तरह की बढ़ती हुई बीमारियों को कम करने के लिए भी लगाएं. और ये सोचे नहीं आप, ये एक बेहतरीन प्रोग्राम चल रहा है, और इस प्रोग्राम के तरह ऐसे समझें कि काफ़ी माशाल्लाह गेस्ट आते हैं और कन्वे करते हैं काफ़ी चीज़ें. तो मैं यही कहूंगा कि आप आज से स्टार्टिंग करें, और ये सीजन बेहतरीन है, इस वक्त शुजरकारी का भी मौसम है, तो आप आज से एक काउंटिंग रखें कि मुझे कम से कम इतने पौधे लगाने, और वही मैसेज आप सब तक फॉरवर्ड करें. ऐसे नहीं कि सिर्फ आपने अपना किरदार अदा कर लिया तो बात खत्म हो गई. भाई किरदार बेशक आप अदा करें, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 10 बंदों तक हमारा ये मैसेज पहुंचाएं कि शुजरकारी करें और सरसब्ज पाकिस्तान बनाएं.
0: ओके जी, थैंक यू सो मच असद बलोच, आप हमारे साथ मौजूद रहे. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन द शो. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज जी. और ये था आज का सेगमेंट हरा भरा पाकिस्तान, जिसको सपोर्ट करता है हमेशा की तरह HFT पाकिस्तान, यानी कि हैप्पीनेस फाउंडेशन ट्रस्ट पाकिस्तान. और आज का सेगमेंट यहीं पे ख़त्म होता है. इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट हमारा होगा अगले वेनसडे एंड थर्सडेज को. सो इसी के साथ हम चलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की जानिब. आपने कहीं नहीं जाना, मेरा साथ देना है, क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है.
2: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए. घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569.
3: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं,
4: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
5: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
6: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तयाब आहिन।
5: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
6: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601100।
7: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट आई फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर आई सूमर

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाइ 03011 96 851।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वाह मदा छो परेशान?
1: नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी।
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
1: अदा जल्दी कर मुखे मुझे एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836
3: आई मोहम्मद उमेर गोरी 03151565724।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94।

0: रेहाना खान भक्कर से हमें सुन रही हैं,
1: जिन्नत
0: नजीर खोसो ने हमें ज्वाइन किया है जी, और इसी के साथ हम लेंगे लास्ट अनलकी कॉलर भी 03000113488 के ऊपर.

Let's do this. Sing with me, everybody, if you know the song.

0: और कुछ कहना चाहेंगे शाहिद?
1: बहुत शुक्रिया, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है माशाल्लाह।
0: थैंक यू सो मच, और आपकी आवाज़ भी काफ़ी अच्छी है।
1: सलामत रहें।
0: थैंक यू सो मच, बहुत सारा ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज़। और ये थे लास्ट लकी कॉलर, इसी के साथ हम फाइनली लेंगे आपसे इजाज़त। 3 मिनट है मेरे पास, सो इंशाल्लाह मेरी आपसे चुटचैट होगी अब मंडी को ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो विद सेम आरजे। सुनना मत भूलिएगा, जिंदगी गुलजार है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ख्वाब देखने के लिए सोना जरूरी है, पूरे करने के लिए जागना उससे ज्यादा जरूरी। लव सम्बल बट थिंक हाई। सो दिस इज मी आरजे रुखसार, साइन आउट, टेक केयर, गुड बाय, अमान खुदा, अल्लाह हाफिज।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाइ 03-01-2196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
4: 03013992836
3: आई मोहम्मद उमर गोरी 03-1559-1724
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

जारी सालसे वारे कोशिशुनि जो हिसो हो। दौरे खे अमेरिका सां ॻंढण वारियूं ख़बरूं बेबुनियाद आहिनि। पाकिस्तान ऐं ईरान जो वापार जारी आहे। हिकु तरफ़िन पाबंदियुनि जे अमल करण जा पाबंद न आहियूं। परॾेही तर्जुमान ताहिर हुसैन अंद्राबी, फील्ड मार्शल सयाद मुनीर जो सदर ट्रंप जे नुमाइंदे तौर तहरान जो दौरो करण वारी ख़बरुनि खे रद्द कंदे चयो आहे त फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर ऐं घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जो ईरानी दौरो छिकताण में घटिताई वारे पाकिस्तानी कोशिशुनि जो हिसो हो। पाकिस्तान रियासती सतह ते अफ़ग़ानिस्तान सां ॻाल्हियूं करण लाइ तयारु आहे। अफ़ग़ानिस्तान खे पंहिंजे सरज़मीन पाकिस्तान ख़िलाफ़ इस्तेमालु थियण खे रोकणो पवंदो। कतरी वज़ीर आज़म ईरान जे अहम दौरे ते अॼु तहरान पहुचंदो। शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल सानी ईरानी सियासी ऐं अस्करी क़यादत सां मुलाकातूं कंदो। अमेरिका ईरान विच में जारी छिकताण जे ख़ात्मे समेत खिते जी सूरतयाल ते ॻाल्हियूं कयूं वेंदियूं। आबराहमज़ी बहाली वारो मामिलो बि ग़ौर हेठि ईंदो।

0: तुम्हें क्या पता कि बच्चे 10 जने 20 गायब हुए हूँ। किसी वर्जन पर उन्होंने
1: डॉक्टर ने कहा कि डब्बे में बच्चे लेके गए और उस SHO नदीम ने बोला है हम में से किसी ने बच्चे के टुकड़े भी नहीं देखे। हम लोग किसी बात पे यकीन नहीं करते।
0: हमने जो भी है हमें दो देखी है ना बच्चों के टुकड़े देखे।
2: वफाकी राजधानी इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में बाहि लगने वाले वाक़े के जिम्मेवार केर वफाकी हुकूमत में डी बी 14 मासूम बारन के सड़ी फोत थे वाक़े की जांच मुकम्मिल न कर सकी। कार्रवाई भी रुगो वफाकी सेक्रेटरी तई महदूद पिम्स जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत बया अमलदार बदसूर उहदन से मौजूद सड़ी फोत थे मासूम बारन जा वारिस इंसाफ जा मुंतजिर साने की अदालत जांच लाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल दरख्वास्त। कौमी असेंबली के सेहत बाबत कमेटी पिम्स में सीमा बाहि लगने वाले बयान के शकी करार दई छो। पिम्स अमले के बयान में तजाद की दावा स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स पारा पिम्स जो दौरो बाहि वाक़े जा तफसील मालूम कया। कमेटी चेयरमैन डॉक्टर महेश कुमार है अमले के बयान में तजाद है। आलिया कामरान अमले के बयान में लगी रो है खेन रटो हणा वो है। डॉक्टर शाजिया सोबे अमले जहा बयान मुतजाद लगे तो ड्यूटी से मौजूद न हुआ। पंजाब जो डहाड़ तकरारी सीजी ए टीपी लिंक कैनाल के खोले छड़ा बिन्हीं तकरारी कैनाल जरिए 18,000 क्यूसिक पानी खर्च शुरू कर छो। पानी खोट के मुंह डींदड़ सिंध में सूरतहाल संगीन थे खदशो। जरियन मुझे पंजाब पारा मुबैना तौर जबरदस्ती खोल सीजी लिंक कैनाल में 13,000 क्यूसिक पानी छो वो है जडे त टीपी लिंक कैनाल में 5,000 क्यूसिक पानी छोड़ कर वो है। सिंध में पानी खोट दौरान पंजाब पारा जबरदस्ती खोल कैनाल से आबादगार खदशा वी वा। इरसा में सिंध की नुमाइंदगी की खामोशी से भी सवाल बरकरार जरियन जो चवण है इरसा में सिंध जो नुमाइंदो वे अरसे ऑफिसी न अची रो है। सिक्योरिटी फोर्सिस जो केपी के बलोचिस्तान में दहशतगर्द खिलाफ कार्रवाई 11 दहशतगर्द मार वह सिक्योरिटी जरिए मूजिब केपी के इलाके बनून लाडा में 7 दहशतगर्द के जन्म भेड़ो कर वो। बलोचिस्तान के इलाके खुशदार में ऑपरेशन दौरान 4 दहशतगर्द मार हथियार दहशतगर्दन जो इख्ताक में तबाह बारूदी मवाद हथ वजीर आजम शहबाज शरीफ पारा कामयाब ऑपरेशन से फोर्सिस के भेटा पेश। शहबाज शरीफ चवा तो दहशतगर्दी खिलाफ जंग में कौम फोर्सिस से गड बीठल है। नवाज लीग पारा इफ्तखार गिलानी के आजाद कश्मीर जो वजीर आजम बनाने जो फैसलो वजीर आजम हाउस में मुशावरत बाद इफ्तखार गिलानी के वजीर आजम बनाने जो फैसलो कर वो। बैरिस्टर इफ्तखार गिलानी टेक्नोक्रेट सीट से चूंडो वो। आजाद कश्मीर के नए वजीर आजम की चूंड सुभाने थी। नौशेरो फेरोजी अदालत में जालंजार के घर से हमले समेत 8 केसन की बुधनी NPP सरबराह गुलाम मुर्तजा जतोई मसरूफ जतोई बया अदालत में पेश। अदालत समूरन केसन की बुधनी 24 सितंबर तई मुलतवी कर छ्यू। मुर्तजा जतोई है केस कूड़ा इंसाफ की उम्मीद है।

0: मीरपुर माथेलो भरसां ॻोठाणे ज़ाल खे क़तल करण बाद पाण खे गोली हणी आपघात करे छॾियो। ॻोठ मीर खान वसीम अब्दुल जब्बार पंहिंजी घरवारीअ खे गोली हणी क़तल कयो। ज़ाल खे क़तल करण बाद जवाबदार अब्दुल जब्बार पाण खे बि गोली हणी आपघात कयो। वारे में ज़रई पाणीअ जी खोड़ ख़िलाफ़ JUI जे सर ते एहतजाज। फाज़िल राउ चौक ते क़ुरान ख़्वानी करे एहतजाज जी धरणो हयो वियो। वाहे तालके मां पाणी खोट ख़तम करण जो मुतालबो। अॻवाणनि चयो आहे त वारे तालके जे शाखनि में ज़रई पाणी न पहुतो त असां वारे जी हर शाख ते क़ुरान शरीफ़ जा ख़त्मा पढ़ी हुकुमराननि जे ख़िलाफ़ एहतजाज कंदा रहंदासीं। जरवार वेझो उड़ी वॻे निंगरी फोत। केतिरा ई ॿार उड़ी में मुबतला। ॻोठ अकबर गबोल में उड़ीअ जी बीमारी पखिड़िजी वई। उड़ीअ में मुबतला 2 सालनि जो शाज़े वलिद मुनवर गबोल फोत थी वियो। केतिरा ई ॿार बीमारी में वरितल। सिहत खाते नोटिस न वरितो। ॻोठाणा परेशानियुनि जो शिकार। नसीराबाद में फुट खाते जे नाजाइज़नि ऐं ॾाढाइनि ख़िलाफ़ सिंध बलूचिस्तान राइस मिल्स एसोसिएशन पारां सिंध बलूचिस्तान राइस मिल्स एसोसिएशन जो इंडस हाईवे ते धरणो। राइस मिल्स काज़ी पेट्रोल पंप वटि टायरनि खे बाहियूं ॾेई रोड ब्लॉक करे धरणो हयो वियो। अॻवाणनि चयो आहे त ज़्यादतियूं बंदि न थियूं त एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: मेरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीए, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश, आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
3: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालानी।
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल। 0300-320-4372 0242-460100।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बैरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 0320180003।

0: इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरा पर नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोज हालानी रोड मेहरा पर राब्ते जे लाए 03201800003।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03008569।
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। हर जुमे छंछर ऐं आचर ते बग़ैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो। याद रखंदा, मरीजन के दवा स्टोर तां वठणी पवंदी। माहिरे अमराज़ नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमज़ोरी कन जो वहण कन जो सूर घटि ॿुधण में अचणु शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपाटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दनि जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569। रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूअर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300-002-7234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-3865-453।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनिया जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई
3: 3593512
4: मुबारक, मतलब हर किस्म
3: सिम जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
5: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
6: 03013992836
7: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो जी एफ एम 94

अदा सही पेरे जोड़ो शौकत सोलंगी जेका मुझे दोस्त आ पेट्रोल पंप जो मुंशी आ

फील्ड मार्शल जो ईरानी दौरो अमन लाइ जारी सालसे वारनि कोशिशनि जो हिसो हो। दौरे खे अमेरिका सां ॻंढण वारियूं ख़बरूं बेबुनियाद आहिनि। पाकिस्तान ईरान जो वापार जारी आहे। हिक तरफ़नि पाबंदियुनि जे अमल करण जा पाबंद नाहियूं। पर तर्जुमान ताहिर हुसैन अंद्रावी फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर जे सदर ट्रंप जे नुमाइंदे तौरु तेहरान जो दौरो करण वारी ख़बरुनि खे रद्द कंदे चयो आहे त फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर ऐं घरू वज़ीर मोहसिन नकवी जो ईरानी दौरो चित्तौड़ में घटताई वारी पाकिस्तानी कोशिशनि जो हिसो हो। पाकिस्तान रियासती सतह किथे अफ़गानिस्तान सां ॻाल्हियूं करण लाइ तयारु आहे। अफ़गानिस्तान खे पंहिंजी सरज़मीन पाकिस्तान ख़िलाफ़ इस्तेमालु थियण खे रोकणो पवंदो। कतरी वज़ीर आज़म ईरान जे अहम दौरे ते अॼु तेहरान पहुचंदो। शेख मोहम्मद बिन सानी ईरानी सियासी ऐं अस्करी क़यादत सां मुलाक़ातूं कंदो। अमेरिका ऐं ईरान विच में जारी चिकनाण जे ख़ात्मे समेत खिते जी सूरतयाल ते ॻाल्हियूं कयूं वेंदियूं। आबनहर जे बहाली वारो मामिलो बि ग़ौर हेठि ईंदो।

0: दस जने अभी गायब हुए हूँ, किसी वजन पर उन्होंने
1: डॉक्टर ने कहा कि डब्बे में बच्चे लेके गए और उस SHO नदीम ने बोला है हम में से किसी ने बच्चे के टुकड़े भी नहीं देखे। हम लोग किसी बात पे यकीन नहीं करते,
0: हमने जो भी है हमें दो देखी है, ना बच्चों के टुकड़े देखे।
2: वफाकी राजधानी इस्लामाबाद JPMG अस्पताल में बाहे लगण वारे वाक़े जो जिम्मेवार केर? वफाकी हुकूमत ॿिए ॾींहं में 14 मासूम ॿारनि जे सड़ी फोत थियण वारे वाक़े जी जांच मुकमिल न करे सघी। कार्रवाई में रुगो वफाकी सेक्रेटरी ताईं महदूद, PIMS जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत ॿिया अमलदार बदस्तूर उहिदनि ते मौजूद। सड़ी फोत थियल मासूम ॿारनि जा वारिस इंसाफ़ जा मुंतज़िर। साने जे अदालती जांच लाइ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख़्वास्त दाख़िल। क़ौमी असेंबली जे सिहत बाबति कमेटी PIMS में SC मां बाहि लॻण वारे बयाननि खे शकी करार ॾेई छॾियो। PIMS अमले जे बयाननि में तज़ाद जी दावा। स्टैंडिंग कमेटी जे मेंबर्स पारां PIMS जो दौरो, बाहि वाक़े जा तफ़सील मालूम कया। कमेटी चेयरमैन डॉक्टर महेश कुमार चयो आहे त अमले जे बयाननि में तज़ाद आहे। आलिया कामरान चयो आहे त अमले जे बयाननि मां लॻी रहियो आहे त खेनि रटो हणायो वियो आहे। डॉक्टर शाज़िया चयो आहे त अमले जा बयान मुतज़ाद आहिनि, लॻे थो त ड्यूटी ते मौजूद न हुया। पंजाब जो ॾाढ तकरारी CG ऐं TP लिंक कैनाल खोले छॾिया। ॿिन्ही तकरारी कैनाल ज़रिए 18,000 क्यूसिक पाणी ख़र्चु शुरू करे छॾियो। पाणी खोट खे मुंहुं ॾींदड़ सिंध में सूरतहाल संगीन थियण जो ख़दशो। ज़रियनि मूजिबि पंजाब पारां मुबैन तौर ज़बरदस्ती खोलियल CG लिंक कैनाल में 13,000 क्यूसिक पाणी छॾियो वियो आहे, जॾहिं त TP लिंक कैनाल में 5,000 क्यूसिक पाणी छोड़ कयो वियो आहे। सिंध में पाणी खोट दौरान पंजाब पारां ज़बरदस्ती खोलियल कैनाल ते आबादगारनि जा ख़र्चा वधी विया। इरसा में सिंध जे नुमाइंदे जी ख़ामोशीअ ते बि सवाल बरक़रार। ज़रियनि जो चवणु आहे त इरसा में सिंध जो नुमाइंदो वॾे अरसे खां आफ़ीस ई न अची रहियो आहे। सिक्योरिटी फोर्सिस जो KPK ऐं बलोचिस्तान में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कार्रवायूं, 11 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियुनि मूजिबि KPK जे इलाइक़े बनूल ऐं लाडा में दहशतगर्दनि खे ज़हन भेड़ो कयो वियो। बलोचिस्तान जे इलाइक़े हुज़दार में ऑपरेशन दौरान 4 दहशतगर्द मारिजी विया। दहशतगर्दनि जो हिकु थाक बि तबाह, बारूदी मवाद हथ। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ पारां कामयाब ऑपरेशन से फोर्सिस खे भेटा पेश। शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जंग में क़ौम फोर्सिस सां गॾु बीठल आहे। नवाज़ लीग पारां इफ़्तिखार गिलानीअ खे आज़ाद कश्मीर जो वज़ीर आज़म बणाइण जो फ़ैसिलो। वज़ीर आज़म हाउस में मुशावरत बाद इफ़्तिखार गिलानीअ खे वज़ीर आज़म बणाइण जो फ़ैसिलो कयो वियो। बैरिस्टर इफ़्तिखार गिलानी टेक्नोक्रेट सीट ते चूंड कयो वियो। आज़ाद कश्मीर जे नए वज़ीर आज़म जी चूंड सुभाणे थींदी। नौशेरो फेरोज़ जी अदालत में ज़ियालनि जार जे घर ते हमले समेत 8 केसनि जी ॿुधणी। NPP सरबराह ग़ुलाम मुर्तज़ा जतोई, मसरूर जतोई ऐं ॿिया अदालत में पेश। अदालत समूरनि केसनि जूं ॿुधणियूं 24 सेप्टेम्बर ताईं मुलतवी करे छॾियूं। मुर्तज़ा जतोई चयो आहे त केस कूड़ा आहिनि, इंसाफ़ जी उमीद आहे। मीरपुर माथेलो भरिसां ॻोठाणे ज़ाल खे क़तल करण बाद पाण खे गोली हणी आपघात करे छॾियो। ॻोठ मीर खान ने अब्दुल जब्बार पंहिंजी घरवारी राबिया खे गोली हणी क़तल कयो आहे। ज़ाल खे क़तल करण बाद जवाबदार अब्दुल जब्बार पाण खे बि गोली हणी आपघात कयो। वारे में ज़रई पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ JUI जे सर ते एहतजाज। फाज़ल राहू चौक ते क़ुरान ख़वानी करे एहतजाजी धरणो हयो वियो। वारे तालुके मां पाणी खोट ख़तमु करण जो मुतालबो। अॻवाननि जो चवणु आहे त वारे तालुके जे शाख़ में ज़रई पाणी न पहुतो त असां वारे जी हर शाख ते क़ुरान शरीफ़ जा ख़तमा पढ़ी हुकुमराननि जे ख़िलाफ़ एहतजाज कंदा रहंदासीं। आज़ाद कश्मीर में शहीद थियल रेंजर सहलकार शाहनवाज़ अली नायक जे बबर लोहे वेझो जनाज़े नमाज़ बाद तदफ़ीन। जनाज़े नमाज़ में पाकिस्तान रेंजर्स जे आफ़ीसरनि, जवाननि ऐं शहरनि जी वॾे अंग में शिरकत कई वई। आज़ाद कश्मीर में रोड क्लीयरेंस ऑपरेशन दौरान बबर लोहे वासी रेंजर सहलकार शाहनवाज़ अली नायक खे हथियारबंदनि शहीद कयो हो। नसीराबाद में फूड खाते जे नाजाइज़नि ऐं ॾाढनि ख़िलाफ़ सिंध बलोचिस्तान राइज मिल्स एसोसिएशन पारां सिंध बलोचिस्तान राइज मिल्स एसोसिएशन जो इंडस हाईवे ते धरणो। राइज मिल्स काज़ी पेट्रोल पंप वटि टायरनि खे बाहियूं ॾेई रोड ब्लॉक करे धरणो हयो वियो। अॻवाननि चयो आहे त ज़्यादतियूं बंदि न थियूं त एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो। मीरपुर माथेलो वेझो हथियारबंदनि हथां फुर मज़ाहिमत ते पीरसन क़तल। ॻोठ गुल मोहम्मद गबोल वासी पीरसन मीर मोहम्मद गबोल खे हथियारबंदनि जरगमाल बणाए फुर लुट कई। मज़ाहिमत करण ते हथियारबंदनि पीरसन खे क़तल करे फरार थी विया। मक़तूल जे भाउ जब्बार पिताफ़ी चयो आहे त भाउ खे फुर मज़ाहिमत ते क़तल कयो आहे। खैबर में सरकारी दवाओं सरकारी अस्पतालन के ई विक्रो करण जो इंकशाफ केटीएन न्यूज रिकॉर्ड हथ करे वरतो। खैबर ए उडेरोलाल जो अस्पतालों पीपीएचआई में जिम थियण बाद बचियल दवाओं विक्रो कयूं वेनि थियूं। मेन स्टोर मां दवाऊं जारी करण बाबति रिपोर्ट केटीएन न्यूज हासिल करे वरती। सरकारी स्टॉक मां दवाऊं ॿीहर ख़रीद करण सबब क़ौमी ख़ज़ाने खे लखे रुपयनि जो नुक़सान। ज़रियनि जो चवण आहे त बचियल दवाऊं डीएचक्यू मटियारी ऐं टीएचक्यू हाला खे विकिरो करे ॾिनियूं वयूं आहिनि। पिथोरो शहर में पाणी पहुचाइण लाइ मिटलाउ केनाल में लॻंदड़ पाइपलाइन ख़िलाफ़ हज़ारे पुछड़े जे आबादगारनि जो धरणो। टेल आबादगारनि एसोसिएशन जे सर ते आबादगारनि ऐं रहवासियुनि एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हयो। आबादगारनि जो चवण आहे त मिटलाउ केनाल में लॻंदड़ पाइपलाइन इलाइक़े वासियुनि लाइ क़ातिल आहे। पुछड़ी जी ज़मीन बंजर बणिजी वेंदी। नौशेरो फेरोज में मुख़्तलिफ़ ॻोठनि जे रहवासियुनि जो बुनियादी सहूलतनि जी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज। ॻोठ सिले वारा चांडिया लिंक रोड जे मरमत न थियण ख़िलाफ़ 25 ॻोठनि जे रहवासियुनि एहतजाज कयो। मुज़ाहिरनि मूजिब ॻोठ बुनियादी सहूलतनि खां महरूम आहिनि। चूंडियल नुमाइंदा गुम आहिनि। मसला हल कया वञनि। कुंडरीअ में कोली बिरादरी जो बासर ऐं पुलिस जे नाजाइज़नि ख़िलाफ़ एहतजाजी रैली। ॻोठ हाजी मोहम्मद रफ़ी काराई जे रहवासियुनि प्रेस क्लब अॻियां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। सदन चवण हो त बासर ज़मीनदार।
3: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
4: माशाल्लाह फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मैरापुर असा वट जगह जो डारियों जगह जा पावा पाइप डेढ़ ब चार छह नव बारह इंच में प्लेन कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाइ खुसूसी रियायत हूंदी। राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 तौकीर अहमद 0306-1623-793।
5: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320180003।
6: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
7: अस्सलाम वालेकुम अदा।
8: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
7: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
8: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
7: न अदा?
9: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
7: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
8: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
7: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
9: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
8: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
10: 0301-399-2836।
11: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर और सूमर से सुबह 10 का शाम 5 बजे तक मरीजन जो इलाज कंदा आइन। हर जुमे छंछर और आचर से बगैर फीस के चेकअप कर वेंदो। याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी। माहिरे अमराज नक, कन, गलो, पुरानो नज़लो, निछो, मथे जो सूर, नजर जी कमजोरी, कन जो वण, कन जो सूर, घट बुधण में अचण, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल जा मर्ज, फालिज, खंघ, टीबी, मादे जी अल्सर, मादे जी जलन, दिली जो वधण, जिगर जा मर्ज, हेपेटाइटिस बी सी, गुर्दे जी पथरी, मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने थो, गुर्दन जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे की खारिश, फट, फुरड़ियों, बारन में कद जो न वधण, मर्दन और औरतन में वजन जो न वधण, उन सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने थो। राबते लए 03011-96-8051।
0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने, मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: कौमी असेंबली जे सेहत बाबत कमेटी पिम्स में एसी मां बाहे लगण वारे बयान के शकी करार ॾेई छॾियो। पिम्स अमले जे बयान में बे तसाद जी दावा। स्टैंडिंग कमेटी जे मेंबर्स पारां पिम्स जो दौरो बाहे वाक़े जा तफ़सील मालूम कया। कमेटी चेयरमैन डॉक्टर महेश कुमार चयो आहे त अमले जे बयान में तज़ाद आहे। आलिया कामरान चयो आहे त अमले जे बयाननि मां लॻी रहियो आहे त खेन रटो हणायो वियो आहे। डॉक्टर शाज़िया चयो आहे त अमले जा बयान मुतज़ाद आहिनि, लॻे थो त ड्यूटी ते मौजूद न हुया।

पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में पेश आयल वाक़ियो इंतिहाई दिल लुखाईंदड़ आहे। मुल्क में अस्पतालनि जूं हालतूं बहितर करण जी ज़रूरत आहे। असांजी ज़िमेवार सिंध जी हद ताईं आहे। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त एनिमल हेल्थ कोरंगी जे दौरे दौरान मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल। मुराद अली शाह चयो आहे त सिंध असेंबली में 6 भेरा सूबे जे विरहाङे ख़िलाफ़ ठहराउ पास कयो आहे, जंहिंखे शौक़ु आहे ॿीहर ठहराउ आणे। सिंध जा माण्हू छा था चाहिनि? सिंध जो आवाम जेको चाहींदो उहो ई थींदो। मुंहिंजी या अवां जी ख़्वाहिशनि सां कुझु बि न थींदो। मकानी निज़ाम ऐं इदारनि खे बाख़्तियार बणाइण पीपल्स पार्टी जो मंशूर आहे। सिंध वाहिद सूबो आहे जिते मकानी हुकूमतूं मौजूदु आहिनि। सिक्योरिटी फोर्सिस जो केपीके ऐं बलूचिस्तान में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कार्रवायूं। 11 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियुनि मूजिबि केपीके जे इलाइक़े बनून ऐं लाडा में 7 दहशतगर्दनि खे जहनुम भेड़ो कयो वियो। बलूचिस्तान जे इलाइक़े खुज़दार में ऑपरेशन दौरान 4 दहशतगर्द मारिजी विया। दहशतगर्दनि जो हिकु थाक बि तबाह। बारूदी मवाद हथ। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ पारां कामयाब ऑपरेशन ते फोर्सिस खे भेटा पेश। शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जंग में क़ौम फोर्सिस सां गॾु बीठल आहे। नवाज़ लीग पारां इफ़्तिखार गिलानी खे आज़ाद कश्मीर जो वज़ीर आज़म बणाइण जो फ़ैसिलो। वज़ीर आज़म हाउस में मुशावरत बाद इफ़्तिखार गिलानी खे वज़ीर आज़म बणाइण जो फ़ैसिलो कयो वियो। बैरिस्टर इफ़्तिखार गिलानी टेक्नोक्रेट सीट ते चूंडियो वियो आहे। आज़ाद कश्मीर जे नए वज़ीर आज़म जी चूंड सुभाणे थींदी।

0: मीरपुर माथेलो भरसां ॻोठाणे ज़ाल खे क़तल करण बाद पाण खे गोली हणी आपघात करे छॾियो। ॻोठु मीर ख़ान अब्दुल जबार पंहिंजी घरवारी राबिया खे गोली हणी क़तल कयो। क़तल बाद फरार थी वियो। पाण खे गोली हणी आपघात करे छॾियो। वारे में ज़री पाणी जे खोट ख़िलाफ़ जे यू आई जे सर ते एहतजाज। फाज़ल राउ चौक ते क़ुरान ख़्वानी करे एहतजाजी धरणो हयो वियो। वारे तालके मां पाणी खोट ख़तम करण जो मुतालबो। अॻवाननि चयो आहे त वारे तालके जे शाखर में ज़री पाणी न पहुतो त असां वारे जी हर शाख ते क़ुरान शरीफ़ जा ख़त्मा पढ़ी हुकुमराननि जे ख़िलाफ़ एहतजाज कंदा रहंदासीं। आज़ाद कश्मीर में शहीद थियल रेंजर्स अहलकार शाहनवाज़ अली नाय जे बबर लोहे वेझो जनाज़े निमाज़ बाद तदफ़ीन। जनाज़े निमाज़ में पाकिस्तान रेंजर्स जे आफ़िसरनि जवाननि ऐं शहरनि जी वॾे अंग में शिरकत। आज़ाद कश्मीर में रोड क्लीयरेंस ऑपरेशन दौरान बबर लोहे वासी रेंजर्स अहलकार शाहनवाज़ अली नाय खे हथियारबंदनि शहीद कयो। नसीराबाद में फूड खाते जे नाजाइज़नि ऐं ॾाढाइनि ख़िलाफ़ सिंध बलोचिस्तान राइस मिल्स एसोसिएशन पारां सिंध बलोचिस्तान राइस मिल्स एसोसिएशन जो इंडस हाईवे ते धरणो। राइस मिल्स काज़ी पेट्रोल पंप वटि टायरनि खे बाहियूं ॾेई रोड ब्लॉक करे धरणो हयो वियो। अॻवाननि चयो त ज़्यादतियूं बंदि न थियूं त एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो। मीरपुर माथेलो वेझो हथियारबंदनि हथां फुर मज़ाहिमत ते पीरसन क़तल। ॻोठु गुल मोहम्मद गबोल वासी पीरसन मीर मोहम्मद गबोल खे हथियारबंदनि जर्गबाल बणाए फुरलुट कई। मज़ाहिमत करण ते हथियारबंदनि पीरसन खे क़तल करे फरार थी विया। मक़तूल जो भाउ जब्बार पिताफ़ी चयो आहे त भाउ खे फुर मज़ाहिमत ते क़तल कयो आहे। खैबर में सरकारी दवाऊं सरकारी अस्पतालनि खे ई विकिरो करण जो इंकशाफ़। केटीएन न्यूज़ रिकॉर्ड हथ करे वरितो। खैबर ऐं उडेरुलाल जूं अस्पतालूं बीपीएचआई में ज़िमकरण थियण बाद बचियल दवाऊं विकिरो कयूं वयूं। मेन स्टोर मां दवाऊं जारी करण बाबति रिपोर्ट केटीएन न्यूज़ हासिल करे वरिती। सरकारी स्टॉक मां दवाऊं ॿीहर ख़रीद करण सबबि क़ौमी ख़ज़ाने खे लखें रुपियनि जो नुक़सान। सरियनि जो चवणु आहे त बचियल दवाऊं डीएचक्यू मटियारी ऐं टीएचक्यू हाला खे विकिरो करे ॾिनियूं वयूं आहिनि। पिथोरो शहर में पाणी पहुचाइण लाइ मिठड़ाव केनाल में लॻंदड़ पाइप लाइन ख़िलाफ़ हज़ारे पोछड़ी जे आबादगारनि जो धरणो। तेल आबादगारनि एसोसिएशन जे सॾु ते आबादगारनि ऐं रहवासियुनि एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हयो। आबादगारनि जो चवणु आहे त मिठड़ाव केनाल में लॻंदड़ पाइप लाइन इलाइक़े वासियुनि लाइ क़ातिल आहे। पोछड़ी जी ज़मीन बंजर बणिजी वेंदी। नौशेरो फिरोज़ में मुख़्तलिफ़ ॻोठनि जे रहवासियुनि जो बुनियादी सहूलतनि जे कोर्ट ख़िलाफ़ एहतजाज। ॻोठ छिले वारा चांडिया लिंक रोड जे मरमत न थियण ख़िलाफ़ 25 ॻोठनि जे रहवासियुनि एहतजाज कयो। मुज़ाहिरनि मूजिब ॻोठ बुनियादी सहूलतनि खां महरूम आहे। चूंडियल नुमाइंदा गुम आहिनि। मसला हल कया वञनि। कुंडरीअ में कोली बिरादरी जो बासर ऐं पुलिस जे नाजाइज़नि ख़िलाफ़ एहतजाजी रैली। ॻोठ हाजी मोहम्मद रफ़ी काराई जे रहवासियुनि प्रेस क्लब अॻियां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। संदन चवणो त बासर ज़मीनदार चौधरी हुमायूं सत्तार ॿारनि खे गार गन कई, हवाई फायर कया, पुलिस पारां इंसाफ़ करण बदिरां उल्टो असां ते केस दाख़िल करे धमकायो पियो वञे। असांखे घरनि मां बेदख़ल करे असांजो माल बासर पुलिस जी मदद सां खणी वियो आहे। आला इख़्तियारियूं नोटिस वठी शफ़ाफ़ जाच कराए इंसाफ़ ऐं तहफ़ुज़ फराहम कनि। लाड़काणे में ग्रैंड हेल्थ अलायंस जे सॾु ते मुतालबनि जी मंटल एहतजाजी रैली। अॻवाननि चयो आहे त सिहत जे इदारनि खे पीपीएचआई हवाले करण बदिरां उन्हनि में सहूलियतूं फराहम कयूं वञनि। सिहत जो शोबो अॻे केतिरनि ई मसइलनि ऐं मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे। मसइलनि खे नज़रअंदाज़ करण बदिरां हुकूमत हल लाइ संजीदा क़दम खणे। मिठीअ में यूसी चेयरमैन इस्तीफ़ा ॾेई लाइव स्टॉक खाते में नायब कासिद जी नौकिरी वठी छॾी। छाछड़ो तालुके जे यूनियन काउंसिल जे चेयरमैन अली नवाज़ इस्तीफ़ा ॾेई यूसी चेयरमैनशिप तां इस्तीफ़ा ॾींदड़ अली नवाज़ चौकीदार जी नौकिरी ज्वाइन करे वरिती। लाइव स्टॉक खाते जे डिप्टी डायरेक्टर तसदीक कंदे चयो आहे त अली नवाज़ चेयरमैनशिप तां इस्तीफ़ा ॾेई नायब कासिद जी नौकिरी ज्वाइन कई आहे। ऐं नेपाल में बोड ऐं लैंड स्लाइडिंग तबाही मचाए छॾी। फोतियुनि जो अंगु वधी 299 थी वियो। 260 परॾेहनि समेत 826 शहरी बदस्तूर गुम। ॻोल्हा जारी। नेपाल ऐं तिब्बत में सरहदी इलाइक़े में बोड ऐं लैंड स्लाइडिंग सबबि 299 ॼणा अजल जो शिकार थिया। नेपाल ऐं चीन जो गुम थियल माण्हुनि जी ॻोल्हा लाइ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी आहे।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर राब्ते जे लाए 0320180003।
4: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300338569।

0: हमें क्या पता कि बच्चे दब जाने अभी गायब हुए इसी वजह से इन्होंने
1: डॉक्टर ने कहा कि डब्बे में बच्चे लेके गए और उस SHO नदीम ने बोला हम में से किसी ने बच्चे के टुकड़े भी नहीं देखे हम लोग किसी बात पे यकीन नहीं करते
0: हमने
1: जो भी है हमें दो
0: देखी हमें बच्चों के टुकड़े देखे
2: वफाकी राजधानी इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में बाहि लगण वारे वाके जो जिम्मेवार केर वफाकी हुकूमत बे डीं भी 14 मासूम बारन जे सड़ी फोत थियण वारे वाके जी जांच मुकम्मल न करे सघी कार्रवाई भी रुगो वफाकी सेक्रेटरी ताईं महदूद पिम्स जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत बिया अमलदार बदस्तूर उहिदनि ते मौजूद सड़ी फोत थियल मासूम बारन जा वारिस इंसाफ जा मुंतज़िर साने जी अदालती जांच लाइ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दाख़िल दरख़्वास्त कौमी असेंबली जे सेहत बाबत कमेटी पिम्स में एसी मां बाहि लगण वारे बयाननि खे शकी करार ॾेई छॾियो पिम्स अमले जे बयाननि में बि तसाद जी दावा स्टैंडिंग कमेटी जे मेंबर्स पारां पिम्स जो दौरो बाहि वाक़े जा तफ़सील मालूम कया कमेटी चेयरमैन डॉक्टर महेश कुमार चयो आहे त अमले जे बयाननि में तज़ाद आहे आलिया कामरान चयो आहे त अमले जे बयाननि मां लॻी रहियो आहे त खेन रटो हणायो वियो आहे डॉक्टर शाज़िया चयो आहे त अमले जा बयान मुतज़ाद आहिनि लॻे थो त ड्यूटी ते मौजूद न हुआ

पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में पेश आयल वाकियो इंतहाई दिल लुखाईंदड़ है। मुल्क में अस्पतालन जो हालतू बेहतर करने की जरूरत जिम्मेवार सिंध की हद ती है। वरे वजीर मुराद अली शाह एनिमल हेल्थ कोरंगी के दौरे दौरान मीडिया से गाल बोल मुराद अली शाह सिंध असेंबली में 6 भेरा सूबे के विरहांगे खिलाफ ठहराव पास किया है जैसे शौक है बीह ठहराव आने सिंध जहा मू चाहन सिंध जो आवाम जो चाही उजी या अवा ख्वाहिशन से कुछ भी नो मकानी निजाम इदार के बाख्तियार बनाए पीपल्स पार्टी जो मंशूर है। सिंध वाहिद सूबो है जिते मकानी हुकूमतू मौजूद हैं। सिक्योरिटी फोर्सिस जो केपी के बलोचिस्तान में दहशतगर्दन खिलाफ कार्रवाई 11 दहशतगर्द मारे वह सिक्योरिटी जरिए मौजूद केपी के इलाके बनून ए लाडा में 7 दहशतगर्दन के जहनम भेड़ो किया वो। बलोचिस्तान के इलाके खुजदार में ऑपरेशन दौरान 4 दहशतगर्द मारे वह दहशतगर्दन जो एक थाक भी तबाह बारूदी मवाद हथ वजीर आजम शहबाज शरीफ पारा कामयाब ऑपरेशन से फोर्सिस के भेटा पेश शहबाज शरीफ चाह तो दहशतगर्दी खिलाफ जंग में कौम फोर्सिस से गड बीठल है। नवाज लीग पारा इफ्तखार गिलानी के आजाद कश्मीर जो वजीर आजम बनाने जो फैसलो वजीर आजम हाउस में मुशावरत बाद इफ्तखार गिलानी के वजीर आजम बनाने जो फैसलो किया। बैरिस्टर इफ्तखार गिलानी टेक्नोक्रेट सीट से चूंडियो वो है। आजाद कश्मीर के नए वजीर आजम की चूंड सुभाने थी।

0: मीरपुर माथिलो भरसां ॻोठाणे ज़ाल खे क़तल करण बाद पाण खे गोली हणी आपघात करे छॾियो। ॻोठ मीर खान अब्दुल जबार पंहिंजी घरवारी राबिया खे गोली हणी क़तल कयो। क़तल बाद फरार थी वियो। पाण खे गोली हणी आपघात करे छॾियो। वारे में ज़री पाणी जी खोट ख़िलाफ़ JUI जे सर ते एहतजाज। फाज़िल राउ चौक ते क़ुरान फानी करे एहतजाजी धरणो हयो वियो। वारे तालके मां पाणी खोट ख़तम करण जो मुतालबो। अॻवाणनि चयो आहे त वारे तालके जी शाख़ में ज़री पाणी न पहुतो त असां वारे जी हर शाख ते क़ुरान शरीफ़ जा ख़त्मा पढ़ी हुकुमराननि जे ख़िलाफ़ एहतजाज कंदा रहंदासीं। आज़ाद कश्मीर में शहीद थियल रहंदड़ सहलकार शाहनवाज़ अली नाइक जे बबरलोए वेझो जनाज़े नमाज़ बाद तक़सीम। जनाज़े नमाज़ में पाकिस्तान रहंदड़।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।
3: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं।
4: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर। शानदार तालीमी इमारत। प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन। एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार। मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला। सरसब्ज बागीचा। बेहतरीन फर्नीचर। शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स। ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत। केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा। एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज। खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले। तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले। स्टडी टूअर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजह स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 03000027234। निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453।
5: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
6: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
5: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
6: राब्ते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हाँ दा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 0301-399-2836।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एतमाद, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ति जिलाई, आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाए 0301-96-8051।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज 100 सोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003385 69।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: पाकिस्तानी कोशिशन जो हिस्सो हो, पाकिस्तान रियासती सतह ते अफगानिस्तान से गालू कर लाए तैयार है। अफगानिस्तान के पेंजी सरजमीन पाकिस्तान खिलाफ इस्तेमाल थे रोकनो पवंदो।

लेफ्टिनेंट जनरल खालिद तारिज भी मौजूद हो। ISPR है त मुलाकात दौरान गडियल दिलचस्पी वारनि मामलनि इलाक़ाई सलामती ऐं दिफ़ाई सहकार ते ॻाल्हियूं कयूं हुयूं। ॿिन्ही अॻुवाणनि पारां बितरफ़नि लाॻापनि ऐं दिफ़ाई सहकार खे वधीक मज़बूत करण वारो अज़म वरजायो। कुवैती वफ़द इलाक़ाई अमन ऐं इस्तेहकाम लाइ पाक फ़ौज जे किरदार ऐं सलाहियतनि जी वाखाण कई।

0: डॉक्टर ने कहा कि डब्बे में बच्चे लेके गए और उस SHO नदीम ने बोला है हम में से किसी ने बच्चे के टुकड़े भी नहीं देखे। हम लोग किसी बात पे यकीन नहीं करते। हमने जो भी है हमें दो
1: नहीं देखी है ना बच्चों के टुकड़े देखे।
2: वफाकी राजधानी इस्लामाबाद जे पेम्स अस्पताल में बाहि लगण वाले वाक़े जो ज़िम्मेवार केर। वफाकी हुकूमत वेडी भी चोड़ा मासूम बारन जे सड़ी फोत थियण वाले वाक़े जा ज़िम्मेवार ज़ाहिर न किया। साने जी जांच लाइ चूंडल कमेटी जांच शुरू करे छॾी। अमले खां लिखत में बयान तलब। CCTV फुटेज भी तहवील में वठी छॾी। कानून वारे वज़ीर सेनेटर आज़म नसीर तरण चयो आहे त ज़िंदगीअ जी का बि क़ीमत नाहे। साने जी जांच बाद ज़िम्मेवारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई थींदी। सुभाणे ताईं शुरूआती रिपोर्ट अची वेंदी। क़ौमी असेंबली जी सिहत बाबत कमेटी पिम्स में AC मां बाहि लॻण वारनि बयाननि खे शकी करार ॾेई छॾियो। पिम्स अमले जे बयाननि में बि तज़ाद जी दावा। स्टैंडिंग कमेटी जे मेंबर पारां पिम्स जो दौरो। बाहि वाक़िए जा तफ़सील मालूम कया। कमेटी चेयरमैन डॉक्टर महेश कुमार बलाणी चयो त अमले जे बयाननि में तज़ाद आहे। आलिया कामरान चयो त अमले जे बयाननि मां लॻी रहियो आहे त कंहिं रटो हणायो वियो आहे। डॉक्टर शाज़िया सोबिया चयो त अमले जा बयान मुतज़ाद आहिनि। लॻे थो ड्यूटी ते मौजूदु न हुआ।

एम्स अस्पताल इस्लामाबाद में पेश आयल वाकियो इंतहाई दिल धड़ींदड़ है। मुल्क में अस्पतालन जो हालतों बेहतर करने की जरूरत है। असांजी जिम्मेवारी सिंध की हद ताई है। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जी इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ कोरंगी के दौरे दौरान मीडिया से ॻाल्हि ॿोल मुराद अली शाह चयो त सिंध असेंबली छपेरा सूबे के विरागे खिलाफ़ ठहराव पास कयो आहे, जंहिंखे शोक आहे बीहर ठहराव आणे। सिंध जा माण्हू छा था चाहिनि? सिंध जो अवाम जेको चाहींदो उहे थींदो। मुंहिंजी या अवां जी ख़्वाहिश सां कुझु न थींदो। मकानी निज़ाम ऐं इदारनि खे बाख़्तियार बणाइण पीपल्स पार्टी जो मंशूर आहे। सिंध वाहिद सूबो आहे जिते मकानी हुकूमतूं मौजूदु आहिनि।

कराची जे वापारी मीर रज़ा केस जांच लाइ जोड़ियल अदालती कमीशन कार्रवाई शुरू करे छॾी। केस सां लॻापियल धुरियन खे नोटिस जारी। अदालती कमीशन मीर रज़ा जे वारिसनि खे 28 अगस्त ते पेश थियण लाइ नोटिस जारी करे छॾियो। संदन वकील जिब्रान नासिर खे बि नोटिस जारी कयो वियो। कमीशन तरफ़ां सिंध हुकूमती फोकल पर्सन खे बि नोटिस जारी कयो वियो। कमीशन जी कार्रवाई जो सुभाणे पहिरियों ॾींहुं हूंदो। कमीशन टर्म्स एंड कंडीशन्स तहत जांच ऐं कार्रवाई 30 ॾींहनि अंदरि मुकमल कंदी। मीरपुर माथेरो भरिसां ॻोठाणे ज़ाल खे क़तल करण बाद पाण बि गोली हणी आपघात करे छॾियो। ॻोठ मीर ख़ान वसेर में अब्दुल जबार वसेर पंहिंजी घरवारी राबिया खे गोली हणी क़तल कयो। ज़ाल खे क़तल करण बाद जवाबदार अब्दुल जबार वसेर पाण खे बि गोली हणी आपघात कयो। खेबर में सरकारी दवाऊं सरकारी अस्पतालनि खे ई विकिरो करण जो इंकशाफ़। केचे न्यूज़ जे कार्ड हथ करे वरितो। खेबर ऐं उडेरोलाल जूं अस्पतालूं PPHI में जम थियण बाद बचियल दवाऊं विकिरो कयूं वयूं। मेन स्टोर मां दवाऊं जारी करण बाबति रिपोर्ट केचे न्यूज़ हासिल करे वरिती। सरकारी स्टॉक मां दवाऊं ॿीहर ख़रीद करण सबबि क़ौमी खज़ाने खे लखें रुपियनि जो नुक़सान। ज़रियनि जो चवणु आहे त बचियल दवाऊं DHQ मटियारी ऐं THQ हाला खे विकिरो करे ॾिनियूं वयूं आहिनि।

0: शुरू फिरोज में मुख़्तलिफ़ ॻोठनि जे रवासियुनि जो बुनियादी सहूलियतनि जी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज। ॻोठु छलीवारा चांडिया लिंक रोड जी मरम्मत न थियण ख़िलाफ़ 25 ॻोठनि जे रवासियुनि एहतजाज कयो। बुनियादी सहूलियतनि खां महरूम आहिनि, चूंडियल नुमाइंदा गुम आहिनि, मसाला हल कया वञनि।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोज हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 0320180003।

0: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुजे दुकान जी बे डरंदी?
2: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी,
4: 03013992836।
3: आई मोहम्मद उमेर गोरी, 03195570724।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94। अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GA FM 94।

प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि में असांजे स्टूडियो में मौजूदु हूंदा आहिनि डॉक्टर मंज़ूर हुसैन महमूद साहब, जेके मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति ॼाण ॾींदा आहिनि। डॉक्टर साहब, हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 वॻे खां 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथी क्लिनिक साम्हूं वधण पटा पेट्रोल पंप कोटड़ी रोड मैरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। अंगारे जे ॾींहुं क्लिनिक बंदि हूंदी आहे ऐं हिन में हफ़्ते जा 3 ॾींहं जुमो छंछर आचर चेकअप फीस बिल्कुलु फ्री हूंदी आहे। बाक़ी दवा मरीज़ के स्टोर तां वठणी हूंदी आहे।

डॉक्टर साहब मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि, जिन में गुर्दे पिते ऐं मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन, संदनि जोड़नि गोॾनि जो सूरु, कुन रग जो सूरु, नक कन गलो प्राउन नज़लो, निछूं मथे जो सूरु, अधु मथे जो सूरु, नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहणु, कन जो सूरु, घटि ॿुधण में अचणु, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिलि जा मर्ज़, फालिज, खंघि, टीबी, मैदे जो सूरु, मैदे जी अल्सर, तिली जो वधणु, जिगर, हेपेटाइटिस बी सी, गुर्दनि जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी ख़ारिश, फट फुरणियूं, ॿारनि में कद जो न वधणु, ऐं मर्दनि ऐं औरतुनि जे पोशीदा बीमारियुनि जो कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि। हिकु दफ़ो ॿीहर अवां सभु लिसनर्स खे ॿुधाईंदा हलूं डॉक्टर जो टाइम ऐं जेका ॾींहुं वेहे थो, जिन में हर अरबा, ख़मीस, जुमो, छंछरु, आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 वॻे खां 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पेट्रोल पंप कोटड़ी रोड मेहरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। ऐं नोट, अंगारे जे ॾींहुं क्लिनिक बंदि हूंदी आहे। ऐं हिन में हफ़्ते जा 3 ॾींहं जुमो, छंछरु, आचर चेकअप फीस बिल्कुलु फ्री हूंदी आहे। बाक़ी दवा मरीज़ खे स्टोर तव्हां वठणी हूंदी आहे।

डॉक्टर साहब, मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि जिनमें गुर्दे, पिते ऐं मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाज कंदा आहिनि। संदनि, जोड़नि, गोॾनि जो सूरु, कुन रग जो सूरु, नक, कन, गलो, पुराणो नज़लो, निछूं, मथे जो सूरु, अधु मथे जो सूरु, नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहणु, कन जो सूरु, घटि ॿुधण में अचणु, शुगर।

ब्लड प्रेशर, दिल जा मर्ज, फाल जी खंग टीबी, मैदे जो सूर, मैदे जी अल्सर, तिली जो वधन, जिगर हेपेटाइटिस बी सी, गुर्दन जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी खारिश, फट फुरणियों, बारन में कद जो न वधन, औरतन ए मर्दन जे पोशीदा बीमारन जो इलाज कंदा आहन। अहां असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल जरिए शामिल थी सको था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-9196-851, 0301-2196-851।

डॉक्टर साहब, हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी रोड में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। ऐं हिकु दफ़ो ॿीहर अवां सभिनी खे ॿुधाईंदा हलूं त अंगारे जे ॾींहुं डॉक्टर साहब जी क्लिनिक बंदि हूंदी आहे। ऐं स्पेशली इन में 3 ॾींहं जुमो छंछर आचर चेकअप फीस बिल्कुलु फ्री हूंदी आहे। बाक़ी दवा मरीज़ खे स्टोर तां वठणी हूंदी आहे।

हाँ जी हाँ लिसनर्स, अवां असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिल थे सको था। लाइव कॉल जो नंबर नोट कंदा 0301-9196-8510 0301-219-6851।

डॉक्टर साहब मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि, जिन में गुर्दे पित्ते मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो। संदनि जोड़नि, गोॾनि जो सूरु, कुन रग जो सूरु, नक कन गलो, पुराणो नज़लो, निछूं मथे जो सूरु ऐं अधु मथे जो सूरु, नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहणु, कन जो सूरु, घटि ॿुधण में अचणु, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिलि जा मर्ज़, फालज, खंघि, टीबी, मैदे जो सूरु, मैदे जी अल्सर, तिली जो वधणु, जिगर, हेपाटाइटिस बी सी, गुर्दनि जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी ख़ारिश, फट फुरियूं, ॿारनि में कद जो न वधणु ऐं मर्दनि जे औरतुनि जे पोशीदा बीमारियुनि जो कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि।

हिकु नंढो शॉर्ट कमर्शल ब्रेक आहे, ब्रेक खां बाद डॉक्टर साहब खे ख़ुश आमदीद ज़रूरु चवंदासीं। त हाणे हलूं था कमर्शल ब्रेक जी तरफ़, ऐं ॿुधंदा रहो GFM 94 मेहरापुर।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वैक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एतमाद, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर के रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिन्हें में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने, मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।

रोशनी जो काफिलो मंजिल तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तदरीसी अमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन अकेडमिक ब्लॉक जो इनकाद मेहनती मशाक तजर्बेकार तदरीसी अमलो सरसब्ज बागीचो बाइक कार पार्किंग बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमेस्ट्री बायोलॉजी जो लेबॉरेटरियूं ऑडियो विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमेस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी इंग्लिश से खसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट जरिए मेडिकल इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतीजा रांदन जो मैदान उते मुनक़द मुकाबला तहरीर तकरीर जहनी आजमाइश जा मुकाबला पंजे अखियन के नूर न्याणन प्यारन पुटन के मुनासिब तलीम तरबियत लाए अजु ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर जी विजिट करियो वधिक राबते लाए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम कॉन्टेक्ट नंबर 03000027234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर कॉन्टेक्ट नंबर 03 01 386 5453

0: कमर्शियल ब्रेक बाद एक दफ़ो ॿीहर अवां सभिनी खे ॿुधणनि खे ख़ुशि आमदीद चऊं था। प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि ऐं जंहिं घड़ी जो इंतज़ारु हुयो डॉक्टर साहब बि पहुची चुका आहिनि असांजे क्लिनिक असांजी स्टूडियो में। सभ खां पहिरियां त असां डॉक्टर साहब खे पंहिंजे प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद चवंदासीं। डॉक्टर साहब अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर साहब कीअं आहियो, तबियत सिहत ठीकु आहे? डॉक्टर साहब कीअं आहियो, ठीकु आहियो? त वैसे ठीकु आहे
1: जी साईं, अलाह ताला जा एहसान, शुक्र आहे मालिक साईं।
0: डॉक्टर अॼु कहिड़े मौज़ बाबति
1: आउज़ु बिल्लाहि मिन शैतान जी, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहिरियां त तारीफ़ूं रब पाक जो जेको असांखे जारे थो, खाराए थो, रोज़ी ॾिए थो, ख़ुशी ॾिए थो ऐं सभिनी ज़मीनी आसमानी आफ़तुनि खां महफ़ूज़ रखे थो। असांजे प्रोग्राम से अची ॻाल्हि अव्हांखे ख़बर आहे त बर वक़्त टाइम ते नशर थींदो आहे ऐं उन में मुख़्तलिफ़ मौज़ूआतुनि जे हवाले सां जेके बि बीमारियूं हूंदियूं आहिनि या टुटका हूंदा आहिनि उन हवाले सां असां पंहिंजे सामान ताईं ई प्रोग्राम पहुचाईंदा आहियूं। असांजी क्लिनिक जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक हफ़्ते जा 6 ॾींहं जुमो, छंछरु, आचरु, सूमरु, अंगार जो ॾींहुं क्लिनिक बंदि हूंदी आहे, अरबा ख़मीस ते खुलियल हूंदी आहे। अहिड़े तरीक़े सां हफ़्ते जा 3 ॾींहं जुमो, छंछरु, आचरु चेकअप फीस फ्री हूंदी आहे, जंहिंजे हिसाब सां पेशंट जेके बि ईंदा आहिनि उनखे दवा बाक़ी पंहिंजी वठणी हूंदी आहे। असांजे प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि उन में मौज़ूआतनि जे हवाले सां जेकॾहिं हणूं त अॼुकल्ह हूअं बि जेको आहे सो तव्हां ॾिठो आहे त गुर्दे जी पथरी जेको आहे सो आम आहे। गुर्दे जी पथरी छो थींदी आहे, कीअं थींदी आहे ऐं उनखे कीअं जेको आहे सो रोके सघिजे थी, उन जे लाइ हिकिड़ो नंढो मौज़ू अवां ताईं पहुचायूं था। हिकु त ॾिसो, गुर्दे जी पथरी केतिरी बि थी सघे 2 mm खां वठी 30-30 mm ताईं जी का सो थींदी आहे ऐं जीअं तव्हांखे पहिरियां ख़बर आहे त तारीफ़ करे रहंदा त गुर्दा असांजे जिस्म में जेके बुकियूं बि चवंदा आहिनि, किडनीज़ बि चवंदा आहिनि, उहे जिस्म में ॿ हूंदियूं आहिनि, हिकु सॼे पासे, हिकु खॿे पासे। ऐं गुर्दे जो बेसिकली जेको कमु हूंदो आहे उहो हूंदो आहे हिकिड़ी जीअं छाणी हूंदी आहे, अहिड़े तरीक़े सां जिस्म में छाणीअ वांगुरु हुनजो कमु हूंदो आहे त जेके बि वेस्ट मेटेरियल एक्सिस जेके वेस्ट मेटेरियल जंहिंखे असां चऊं, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ केमिकल्स हूंदा आहिनि, मिनरल्स हूंदा आहिनि, यूरिक एसिड्स वग़ैरह हूंदा आहिनि, उहे जेको आहे सो अख़राज कंदी आहे ऐं पोइ उन खां पोइ जेको आहे सो उहो ई उन खां पोइ जेको यूरिनरी जो सिस्टम हूंदो आहे उहो यूरिनरी सिस्टम बहाल थींदो आहे ऐं पेशाब जेको आहे सो

0: ठहंदियूं आहिनि। इन्हनि जे करे इन्हनि शयुनि जो असांखे इस्तेमालु घटि करणु घुरिजे, ऐं जॾहिं थी वञे त बिल्कुलु बंदि करणु घुरिजनि। ऐं पाणी जो इस्तेमालु ज़्यादा खां ज़्यादा इस्तेमालु करणु घुरिजे। खीरो वांगुरु इन जे लाइ तमामु हिकिड़ो बहितरीनु आहे। कची लस्सी जेको आहे इस्तेमालु करणु घुरिजे। सुबुह जे टाइम में जेकॾहिं कंहिंखे पथरी आहे त नेराने जेको आहे सो हिकिड़ी गिलास नीम गरम गिलास पाणी में हिकु लीमू जो रस विझोसि, हिकिड़ो चमचो माखी जो, ऐं हिकिड़ो ज़ैतून जो चमचो तेल जो, उहो विझी करे पीअण सां जेको आहे सो गुर्दे जी जेकी बि पथरी या किचरो वग़ैरह आहे उहो निकिरियो वेंदो आहे। सो हीउ हिकिड़ो नंढो तारीफ़ हुयो, हिकिड़ी ख़बर हुई, हिकिड़ी ॼाण तव्हां ते पहुचाईसीं त गुर्दे जी पथरी, गुर्दो छा हूंदो आहे, गुर्दे जी पथरी जेको आहे सो कीअं जेको आहे सो ठहंदी आहे, ऐं उनखे कीअं जेको आहे सो ख़तमु करे सघिजे थो। हीउ हिकिड़ो देसी ॾसो आहे। लेकिन गुर्दे जी पथरी ॾिठो इहो ई वियो आहे त जंहिंखे बि थी आहे त वरी बार बार थींदी आहे, चाहे उहो ऑपरेशन बि कराईंदो आहे लेकिन पोइ बि जेको आहे सो गुर्दे जी पथरी थियो वञे। लेकिन असां वटि होम्योपैथिक इलाज में बग़ैर ऑपरेशन जे हिकु त पथरी निकिरी वेंदी आहे, ऐं असांजे इलाज में इहो फ़ाइदो आहे त उहा पथरी ॿीहर जेको आहे सो न ठहंदी आहे। ऐं अलहमदिल्ला अलहमदिल्ला काफ़ी सारा पेशेंट असां वटि चाहे 2 mm जी पथरी हुजे, 10 mm जी पथरी हुजे, वेंदे 30 mm ते पथरी बि असां बग़ैर ऑपरेशन जी जेको आहे सो ॿ टे पथरी हूंदियूं आहिनि जेके गुर्दनि में पइजी वेंदियूं आहिनि, उहे जेको आहे सो निकिरी वेंदियूं आहिनि। सो अहिड़े तरीक़े सां असां पंहिंजे ॿुधंदड़नि खे हिन प्रोग्राम जी तवसो सां इहो ई जेको आहे मशवरो ॾींदासीं त जंहिंखे बि जेकॾहिं गुर्दे जी पथरी आहे त उहो जेको आहे सो ऑपरेशन वग़ैरह बिल्कुलु ई न कराए, ऐं होम्योपैथिक दवा जेको आहे सो इस्तेमालु करे। जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक अवां खे ख़बर आहे त असांजी मौजूदु हूंदी आहे कोटड़ी रोड ते साम्हूं वधण पुटा पेट्रोल पंप। टाइमिंग सुबुह जो 10 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं। इन में हफ़्ते जा 3 ॾींहं चेकअप फीस फ्री हूंदी आहे। जुमे जो ॾींहुं, छंछर जो ॾींहुं, आचर जो ॾींहुं इहो बिल्कुलु न विसारींदा। उनखां पोइ अंगारो असांजी क्लिनिक बंदि हूंदी आहे। बकाया ॿिया ॾींहं बि क्लिनिक खुलियल हूंदी आहे जंहिंमें सूमर, अरबा ऐं ख़मीस जो ॾींहुं मौजूदु आहे। अहिड़े तरीक़े सां मुंहिंजे ख़्याल में त हीअ असांजी नंढी ॼाण हुई जेकी असां पंहिंजे जेको आहे सो ॿुधंदड़नि ताईं पहुचाईसीं। ऐं इन जो हिकिड़ो जीअं असां ॻाल्हि कईसीं त असांजी होम्योपैथिक दवाउनि में जेको सो असरात एतिरा बहितरीन हूंदा आहिनि जो बग़ैर ऑपरेशन जे पथरी निकिरी वञे थी। त इन जो हिकिड़ो प्रूफ जेकॾहिं ॾियूं त रिसेंटली ही जेको असां प्रोग्राम कयोसीं अहिड़े तरीक़े सां ई कुझु ॾींहुं अॻे बि असांजो हिकिड़ो पेशेंट हुयो जेको असांजी क्लिनिक तां दवा वठी वियो, ऐं उनखे जेको आहे सो अहिड़ी क़िस्म जी पथरी हुयूं, लेकिन उनजी पथरी बि अलहमदिल्ला हिकिड़ो ॾिसो शिफ़ा अलाह ताला जे हथ में। असां पाण ॾियां कोन चवंदा आहियूं त असां एटलीस्ट घटि में घटि चवंदा आहियूं कंहिंखे त पोइ बि 3 महीना न त 4 महीना 5 महीना बि लॻी वेंदा आहिनि, पर जेकॾहिं ख़ुदा जिना शिफ़ा जेतिरी जल्दी ॾिए उनखे केरु रोके सघे थो। त इन पेशेंट खे 15 ॾींहनि में उन जूं 10 mm जूं पथरियूं, जेके 3 पथरियूं हुयूं जेको आहे सो इहे निकिरी आहियूं। उनजो ख़ुदि ज़िबानी अवां उनजो इंटरव्यू असांजी क्लिनिक ते आयो, उनजो ॿुधी सघो था।
1: नबी बशकुर सालिया पट साईं
2: सालिया पट वेठा आहियो, ऐं छा तकलीफ़ हुई तव्हांखे आयो?
1: हिते पथरी बि हुयो, कदूद बि हुयो,
2: पथरी कदूद बि हुयो,
1: हा उन सां किचरो ऐं
2: 10 mm जी पथरी हुई, कदूद बि हुयो ऐं किचरो बि हुयो, ऐं उन खां अलावा कन जो छा मसइलो हुयो?
1: साइड सां ज़ख़्म
2: इंफेक्शन हुयो, ठीकु आहे। कननि सां छा मसइलो हुयो?
1: कन बंदि थिए पिया,
2: कन बंदि हुया। हाणे पथरी तव्हांजी जेको अॻु में अल्ट्रासाउंड करायो माशाल्लाह 15 ॾींहनि में, वरी हाणे कल्ह तव्हां ताज़ो अल्ट्रासाउंड कराया आहियो,
1: सही,
2: त उन में हींअर पथरी बिल्कुलु जेको आहे सो यानी निकिरी वई आहे, इन्फेक्शन बि ख़तमु थी वियो आहे, ऐं माशाल्लाह तव्हांजो सूरमूर बि ख़तमु थी वियो आहे। कन बि तव्हांजो ॿई कन बंदि हुया, हिकिड़ो कन तव्हांजो खुली वियो आहे, हिकिड़ो बाक़ी रहण लाइ, ईअं ई आहे माना तव्हांखे फ़ाइदो पियो आहे काफ़ी माशाल्लाह,
1: बिल्कुलु फ़ाइदो पियो आहे।
2: तव्हां असांजो FM रेडियो ते जेको आहे सो मशहूरी ॿुधी साले पट खां पोइ तव्हां आया आहियो, ऐं अलहमदिल्ला तव्हांखे जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक ते आयो डॉक्टर मंज़ूर मेमण वटि, तव्हांखे काफ़ी फ़ाइदो जेको आहे पियो। तव्हां ॿियनि खे ॿुधंदड़नि खे कहिड़ो पैगाम ॾींदव?
1: साईं इहे पैगाम ॾींदा आहियो त कदूद हुयो, पथरी हुई, उहो असांजो डॉक्टर वटि वियासीं, असांजो मसलो हल थी वियो आहे
2: माशाल्लाह। ऐं इन खां अॻे तव्हां केतिरो टाइम इलाज करायो ॿियांदा? किथां किथां इलाज
1: कर उनखे कदूद हुयो, उहो ऑपरेशन करायो मूं खैरपुर में,
2: त पोइ वरी ऑपरेशन खां बाद में बि 45 ग्राम जो वरी तव्हांजो प्रोस्टेट ग्लैंड ठही वियो, ऐं अलहमदिल्ला अॼु दवा खां पोइ माशाल्लाह तव्हांखे दवा में फ़र्क़ु पइजी वियो माशाल्लाह। तव्हांखे असांजी तरफ़ां मुबारक हुजे, ऐं ॿियनि सभिनी ॿुधंदड़नि खे

0: असां पैगाम ॾींदासीं त होम्योपैथिक इलाज उहो इलाज आहे जेको बग़ैर ऑपरेशन जे जेको आहे सो मुमकिन आहे ऐं को बि हिन जो साइड इफेक्ट न आहे, चाहे गदूद हुजे, चाहे पथरी हुजे, चाहे को बि मसइलो आहे, बग़ैर ऑपरेशन जे दवा जो इलाज मौजूदु आहे। महिरबानी वारी
1: जी साईं, इहो तव्हां बख़ूबी पाण बराह रास्त ॿुधो। जेको छो जो हू बि जेके पेशंट्स हूंदा आहिनि जॾहिं ठीकु थी वेंदा आहिनि त ख़ुशी विच असांखे FM ते लाइव कॉल करे बि जेको आहे सो पंहिंजा व्यूज़ ॿुधाईंदा आहिनि, या क्लिनिक ते ईंदा आहिनि त बि असां वटि क्लिनिक ते अची जीअं पंहिंजा व्यूज़ रिकॉर्ड कराए वेंदा आहिनि। सो असांखे बि तमामु घणी ख़ुशी थींदी आहे। असां दुआऊ बि हूंदा आहियूं त जेतिरो जल्द थी सके पेशंट जेको आहे सो सिहतयाब थी वञे। जी सर, वॾी महिरबानी।
2: तमामु बहितरीन सर, माशाल्लाह। ऐं असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिलु थी सघो था। लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-2196-851, 0301-2196-851। डॉक्टर साहिबु, हर अरबा, ख़मीस, जुमे, छंछर ऐं आचर ते सुबुह 10 वॻे खां 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पटोड़ा पेट्रोल पंप कोंट्री रोड में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। ऐं नोट, अंगारे जे ॾींहुं क्लिनिक बंदि हूंदी आहे। इन में हफ़्ते जा 3 ॾींहं स्पेशली जुमो, छंछर ऐं आचर चेकअप फीस बिल्कुलु फ्री हूंदी आहे। बाक़ी दवा मरीज़नि खे स्टोर तां वठणी हूंदी आहे।
1: बिल्कुलु, असां रिक्वेस्ट कंदासीं त नंबर असांजो कॉन्टेक्ट नंबर मरीज़नि जे लाइ ज़रूरु जेको आहे अनाउंस कंदो।
2: सर, कॉल असांजे प्रोग्राम जे लाइव कॉल ज़रिए शामिलु थियण जे लाइ नंबर आहे 0301-2196-851
1: या 0301-2196-851। जी सर।
2: सर, कॉल जी तरफ़ हलंदासीं।
1: जी
2: सर, ॾिसूं था कहिड़ा लाइन ते। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: साईं, वालेकुम अस्सलाम। जी,
2: छा पुछणु चाहींदा डॉक्टर साहिब खां?
3: डॉक्टर साहिब खां इहो पुछिणो आहे त मूंखे कारी खाई हुई, मां हुन खां इलाजु करायो, 4 महीना इलाजु करायो,
1: आवाज़ कटिजे पियो थोरो, ॿाहिरि निकिरी ॻाल्हायो ऐं वरी दोबारा जेको आहे सो तव्हां ॿुधायो।
2: अदा, अव्हांजो आवाज़ सही न पियो अचे, जॻहि चेंज कयो। अव्हांजो आवाज़ सही न पियो अचे, जॻहि चेंज कयो। अदा, काल तव्हां बीहर कयो, आवाज़ अव्हांजो सही न पियो अचे। लिसनर्स खे इहे ई असां रिक्वेस्ट कंदासीं त कंहिं सिग्नल वारी जॻह ते वञी असांखे कॉल कंदा कंहिं प्रोग्राम में, वरना ई प्रोग्राम डिस्टर्ब थींदो आहे, ॿियूं कॉलूं बि बिज़ी रहनि थियूं। असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिलु थियण जे लाइ असांजो नंबर आहे 0301-2196-851। ऐं डॉक्टर साहब, मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि जिन में गुर्दे, पिते, मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि। संदनि, जोड़नि, गोॾनि जो सूरु, कुनरग जो सूरु, नक, कन, गलो, पुराणो नज़लो, निछूं, मथे जो सूरु ऐं मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जो इलाजु कंदा आहिनि। लाइव कॉल जी तरफ़ हलंदासीं, ॾिसंदासीं केरु लाइन ते मौजूदु आहे। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम सर, कहिड़ा हाल आहिनि? ख़ुशि आहियो?
2: अलहमदिल्ला, ठीकु ठाक। तव्हां केरु पिया ॻाल्हायो?
4: अदा लखमीर मला सर, ठहरी मीरवा खां।
2: जी, अदा छा पुछणु चाहींदा डॉक्टर साहिब खां?
4: सर, जेको आहे तबियत में थोरी बेक़रारी थी रहे, थकावट ऐं उन खां पोइ राति जो बुखार थो अचे, इहो वजह थोरी पुछणी। ॿियो थोरो पेट जो मसलो बि आहे, माना कब्ज़ी वब्ज़ी आहे।
2: अच्छा,
1: ठीक आहे, अदा खे इहो रिक्वेस्ट कंदासीं त सुभाणे क्लिनिक ते रूबरू ॾेखारे वञनि त वधीक बहितर आहे। फ़िलहालु छो जो कहिड़ो बि जॾहिं मर्ज़ु हूंदो आहे उनखे जॾहिं साम्हूं वेही करे ॾिसिबो आहे त डायग्नोस थी वेंदो आहे। फ़िलहालु कारी ड्राख रोज़ाना राति जो 7-8 दाणा राति जो पाणी में पिसाए रखो, नंढो टुकड़ो मिसरी जो ऐं हिकिड़ो नंढो फ़ोटो ॿ कारा मिर्च पाणी में पिसाए रखो, सुबुह जो खाई करे उहो पाणी पी छॾियो, इनशाला ताला उन सां बि अव्हांखे शिफ़ा थी वेंदी।
2: तमामु बहितरीन। डॉक्टर साहिबु, हर अरबा, ख़मीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पटोड़ा पेट्रोल पंप कोटरी रोड मेरापुर में इलाजु कंदा आहिनि। लाइव कॉल जी तरफ हलंदासीं। अस्सलाम वालेकुम।
3: मां मुजा सतो को साल सते का मुगर आया।
2: जी जी, छा पुछंदा डॉक्टर साहब का?
3: डॉक्टर का मखे कारी खाई हुई, वो मां इन को 4 महीना इलाज कराए डॉक्टर को।
2: जी जी,
3: वो जेरे ते असर दियो।
2: अच्छा,
3: वो नवा सा 5 चक्कर मुजी एंडोस्कोपी थी, वा तमाम रत आयो गोस्त वांगुर आई पेट में आयो।
2: सही,
3: तो हाने जान में साव ना है, जंग में साव ना है, जो मां उस ते हली सका जा बेड़ो डॉक्टर।
2: ठीक है डॉक्टर, डॉक्टर साहब वहां के बताए थो रेडियो बदो।
1: बिल्कुल, अदे जो चवण हो तो ट्रीटमेंट कराई ए खुली कोन बुदायो त किथां जेको आसो या असन दे नाले चयो है त बेरल पेशेंट के जरे भी दवान जे बारे में चबो है त फुली एकड़ी केयर चे भी आए, परहेज चे भी आए, दवा के भी आए, दवा के मुकम्मल तरीके से जेको आसो इस्तेमाल करण जो चबो है। अड़ो पेशेंट वरी जेकॾहिं हिकिड़ो कंहिं बि डॉक्टर ॾे वञे थो, ॾिसो हिकिड़ो पेशेंट जो जॾहिं केस असां वटि, उहो पेशेंट तॾहिं ईंदो आहे जॾहिं मर्ज़ु तमामु घणो हद खां वधी वेंदो आहे, त पोइ जेको आहे सो पहुचंदो आहे। उन हूंदे बि शिफ़ा जीअं पहिरीं चवंदा आहियूं त अलाह ताला जे हथ में हूंदी आहे ऐं उनखे मेडिसिन्स ॾिनी वेंदी आहे, पर जॾहिं उहो पेशेंट दवाऊं जेको आहे सो मुकमल तरीक़े सां मुकमल डोज़ इस्तेमालु न करे सघंदो आहे, त पोइ जेको आहे सो उनखे उहा तकलीफ़ जेको आहे ॾिसो जेकॾहिं हिकिड़ो अहिड़े क़िस्म जो तव्हां कहिड़ा खोड़ सारा पेशेंट ॾिठा आहिनि ऐं जेके हॉस्पिटलाइज़ हूंदा आहिनि, उतां बि जेको आहे सो उहे ना उमेद थी करे मोटी वेंदा आहिनि, या जेको आहे सो जेकॾहिं उन्हनि जी हयाती बि पूरी थी वेंदी आहे। पर होम्योपैथिक दवा जो को बि साइड इफ़ेक्ट न हूंदो आहे ऐं उहा दवा जेको आहे सो कमु कंदी आहे। पर जॾहिं मां पहिरीं ॻाल्हि कई त पहिरें जॾहिं दवाउनि जो पंहिंजो असरात हुनजा पियल हूंदा आहिनि त उन में जेको आहे सो पेशेंट जेको आहे सो उहो रिकवर घटि थी सघंदो आहे ऐं उन पेशेंट खे उहो बि थियणु जेको आहे सो करणु घुरिजे आहे त वरी रूबरू बि दोबारा ॾेखारे सघे पियो। हींअर बि असांखे इहो ई चवंदासीं त बिल्कुलु उहो रूबरू जेको आहे सो ॾेखारे सघे थो। जी साईं,
2: ॿी कॉल जी तरफ़ हलंदासीं। अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम
2: जी, अदा केरु ऐं किथां खां?
5: ऐं लौंग खान मलाह खां, ताजमहल मलाह खां थो चवां। सर, असांजे डॉक्टर साहब खां पुछणो हो त सर, अखियुनि में नॉर्मल ख़ारिश थिए थी, इहो छा वधाए इन छाजे करे थिए थी, इन जो छा फैशन आहे?
2: ठीकु आहे, रेडियो ॿुधो, अव्हां ॿुधायो डॉक्टर साहब।
1: बिल्कुलु, अखियुनि जी ख़्वाहिश हिकिड़ी एलर्जी थी सघे थी, इन हवाले सां अधे खे इहो चवंदासीं हिनखे मेटणो न हूंदो आहे। ज़्यादा सां ज़्यादा तव्हां पाणीअ जा छंडा आणे सघो था, या गुलाब जो पाणी जंहिंखे अरके गुलाब मिली वेंदो आहे, ॿ असांजी शहर मां तव्हां उहो विझी सघो था, अञा बि फ़र्क़ु न पए त पोइ रूबरू ॾेखारे सघो था।
2: हिकु ॿी लाइव कॉल जी तरफ़ हलंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम।
2: अदा सभ खां पहिरियां रेडियो सेट बंदि कयो। छा पुछणु चाहींदा डॉक्टर साहब खां? जी जी, छा पुछणु चाहींदा डॉक्टर साहब खां? अच्छा, सॼे मथे में अधु मथे में सूरु
3: आहे?
2: अच्छा, ठीकु आहे, रेडियो सेट ॿुधो, अव्हांखे डॉक्टर साहबु ॿुधाए थो।
1: देख चवंदासीं देख त ब्लड प्रेशर पंहिंजो चेक कराए, वरना जेको आहे रूबरू ॾेखारे वञे त वधीक बहितर आहे।
2: अव्हां असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिलु थी सघो था। लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-9196-51। प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि। ॿी कॉल जी तरफ़ हलंदासीं। अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम अस्सलाम।
2: केरु हेॾा किथां खां? छा पुछणु चाहींदा डॉक्टर साहब खां?
6: डॉक्टर दवा वठी वियो अचर ते।
2: जी जी,
1: नरे जी तकलीफ़ में फ़र्क़ु पियो आहे?
2: ठीकु आहे डॉक्टर साहब, तव्हांखे ॿुधाए थो।
1: हा त पेशंट हफ़्ते जी ॻाल्हि ॿुधाई आहे त नरे जी तकलीफ़ हुई, हुनखे दवा वठी वियो आहे, त ज़ाहिर आहे त हिकिड़े हफ़्ते में जेको ऑपरेशन जो केस आहे त उहो ठीकु त कोन थींदो आहे, त उन में थोरो टाइम लॻंदो आहे। बाक़ी ज़ाहिर आहे थोरी परहेज़ माण्हू करे थो खाधे पीते जे हवाले सां, त वीकनेस पंहिंजे हवाले सां रहंदी आहे, त जॾहिं बि इहो कोर्स ते पेशंट जेको हुजे उहो पंहिंजो कोर्स पूरो करे, या इन विच में जेको आहे सो जेकॾहिं का बि कॉम्प्लिकेशन आहे त वरी रूबरू जेको आहे सो ॾेखारे सघे थो। अदेखे बि इहो ई चवंदुसि त सुभाणे रूबरू अची ऐं वरी ॾेखारे सघे थो।
2: प्रोग्राम आए सेहत की गाल असा मौजूद आ स्टूडियो में डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमून साहब। डॉक्टर साहब हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर से सुबह 10 वगे का शाम 5 वगे तई जर्मन होम्योपैथी क्लिनिक सामू वधन पोटरा पेट्रोल पंप कोटड़ी रोड में मेरापुर में मरीजन जो इलाज कंदा है। अंगारे के ढी क्लिनिक बंद होंगी है इनमें स्पेशली हफ्ते जा 3 ढी जुमो छंछर आचर चेकअप फीस बिल्कुल फ्री होंगी है मरीजन के दवा स्टोर तुम वी होंगी है। अस प्रोग्राम में लाइव कॉल के जरिए शामिल थी सको था। लाइव कॉल जो नंबर है 0301-9196-851। डॉक्टर साहब मुख्तलिफ बीमारियों जहा माहिर डॉक्टर हैं जिनमें गुर्दे पिते मसाने की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कंदा हैं संदन जोड़न गोडन जो सूर कुनरग जो सूर नक कन गलो पुरानो नज़लो निछू मथे जो सूर अध मथे जो सूर नज़र की कमजोरी कन जो वहन कन जो सूर घट बुदन में अचन शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फाल की खंग टीबी मैदे जो सूर मैदे की अल्सर तिली जो वधन जिगर हेपेटाइटिस बी सी गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरणियों बारन में कद जो न वधन औरतों ने मर्दन के पोशीदा बीमारियों जो कामयाब इलाज कंदा असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल जरिए शामिल थे जीरो असो नंबर है 0301-9196-851। एक दफो बीहर अवं एड्रेस टाइम डॉक्टर साहब जो नोट कराइंदा से। डॉक्टर साहब हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सूमर ते सुबह 10 वगे का शाम 5 वगे तई जर्मन होम्योपैथी क्लिनिक सामू वधन पोटरा पेट्रोल पंप कोटड़ी रोड मेरापुर में मरीजन जो इलाज कंदा हैं। नोट अंगारे के ढी क्लिनिक बंद होंगी है स्पेशली इनमें 3 ढी चेकअप फीस बिल्कुल फ्री हूँ जिनमें जुमो छंछर ए आचर बाकी दवा मरीज के स्टोर तुम वी। जी सुबह जुमो है चेकअप फीस का बचन के लिए तुम फ्री में चेकअप कराए सको था। असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल जरिए शामिल थी सको था। लाइव कॉल जो नंबर है 0301-9196-851।

0: डॉक्टर साहब मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि, जिन में गुर्दे पिते मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन कंदा आहिनि, संदन जोड़नि गोॾनि जो सूर, कुन रग जो सूर, नक किन गलो पुराणो नज़लो, निछू मथे जो सूर, अधु मथे जो सूर, नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहणु, कन जो सूर, घटि ॿुधण में अचणु, शुगर ब्लड प्रेशर, दिलि जा मर्ज़, फालिज खंघु, टीबी, मैदे जो सूर, मैदे जी अल्सर, तिली जो वधणु, जिगर हेपेटाइटिस बी सी, गुर्दनि जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंगु सांवरो, चेहरे जी ख़ारिश, फट फुरणियूं, ॿारनि में कद जो न वधणु ऐं औरतुनि ऐं मर्दनि जे पुशीदा बीमारियुनि जो कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि। असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिलु थियण जे लाइ लाइव कॉल नंबर आहे 0301-9196-851 0301-9196-851। डॉक्टर साहब वक़्त जो अहसास आख़िर में अवां पंहिंजे लिसनर्स खे कहिड़ो पैगाम ॾियणु चाहींदा?
1: जी साईं, बिल्कुलु वॾी महिरबानी। आख़िर में प्रोग्राम में पैगाम इहो ई हूंदो आहे त वालदेन जॾहिं ज़िंदा हूंदा आहिनि त जेको आहे सो अव्हांजे दुआउनि जा दर जेको आहे सो खुलियल हूंदा आहिनि। इन जे करे पंहिंजे वालदेन जी ख़िदमत कंदा करियो।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ड जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वैक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-33-85569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप, कोटली कबीर रोड, मेहरापुर, कराची ए इस्लामाबाद जो मशहूर। डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह। हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर और सूमर से सुबह 10 का शाम 5 बजे तक मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। हर जुमे, छंछर और आचर से बगैर फीस के चेकअप कयो वेंदो। याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी। माहिर अमराज, नक, कन, गलो, पुरानो नज़लो, निछो, मथे जो सूर, नजर जी कमजोरी, कन जो वहण, कन जो सूर, घट बुधण में अचण, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल जा मर्ज, फालिज, खंघ, टीबी, मादे जी अल्सर, मादे जी जलन, दिली जो वधण, जिगर जा मर्ज, हेपेटाइटिस बी सी, गुर्दे जी पथरी, मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दन जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे की खारिश, फट, फुरड़ियों, बारन में कद जो न वधण, मर्दन औरतुन में वजन जो न वधण, उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राबते लाए 0301-2196-851।
0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने, मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-33-85569।

जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 ने

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: वफाकी राजधानी इस्लामाबाद जी फिम्स अस्पताल में फायर लगण वाले वके जो जिम्मेवार केर वफाकी हुकूमत वेडी भी 14 मासूम मरण जी सड़ी फोत थण बारे वाके जा जिम्मेवार जाहिर न किया। साने जी जांच लाए जोड़ियल कमेटी जांच शुरू करे छी। हमले खान लिखत में बयान तलब सीसीटीवी फुटेज भी तहवील में वी छी। कानून बारे वजीर सेनेटर आजम नसीर तरड़ है तो जिंदगी की का भी कीमत ना। साने की जांच बाद जिम्मेवार खिलाफ कार्रवाई थी। सुबाने ताई शुरुआती रिपोर्ट अची वी। कौमी असेंबली की सेहत बाबत कमेटी पिम्स में एसी में बाहर लगन वन बयान के शकी करार दई छो। पिम्स असेंबली के बयान में भी तजाद की दावा। स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स पारा पिम्स जो दौरो बाहे वाक्य जहा तफसील मालूम कया। कमेटी चेयरमैन डॉक्टर महेश कुमार मुनानी अमले के बयान में तजाद है। आलिया कामरान अमले के बयान में लगी रो है कें

0: रटो हणायो पियो आहे। डॉक्टर शातिया सोफिया चयो त हमले जा बयान मुतज़ाद आहिनि, लॻे थो ड्यूटी ते मौजूद न हुआ।
1: मुझे तो ये ख्याल है जिसको शौक है वो नया ऐसा करार कर दिया है कि इस सूबे के लोग क्या चाहते हैं, सूबे के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव क्या चाहते हैं। हम कल देखेंगे असेंबली का व्यू अपना क्या है, सूबे की आवाम को चाहेगी। चेयरमैन गुलाम भट्टो जरदारी साहब कह चुके हैं कि जो इस मुल्क की आवाम चाहेगी सिर्फ वो होगा मेरे आपके या किसी और के कहने से काम आ सकती। सिर्फ असेंबली 6 दफा एक अहदाब पास और आखिरी तौर पर भी फरवरी 2026 में बड़ी डिफिकल्ट करार था। इसमें अगर आपको पढ़ लें जितनी बाल्की सिंध के माण्हू जी पाकिस्तान की कुछ पार्टी कई आए जो तिरतरे को तुसे अला से असांखे ताकत ॾे त अञा वधीक
0: कंहिंजी ख़्वाहिश सां कुझु न थींदो। नवनि सूबनि बाबति जंहिंखे शो कर ठहराउ आणे सिंध असेंबली 6 भेरा सूबे जे विरहाङे ख़िलाफ़ ठहराउ पे पास कयो आहे। सिंध जा माण्हू छा था चाहिनि ख़बर आहे। सिंध जो अवाम जेको चाहींदो उहो ई थींदो, मुंहिंजे या अवां जी ख़्वाहिश सां कुझु न थींदो। वॾे वज़ीर मादर शाह जी इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ फोरंगी जे दौरे दौरान मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल मादरी शाह चयो त मकानी निज़ाम ऐं इदारनि खे बाख़्तियार बणाइण पीपल्स पार्टी जो मंशूर आहे। सिंध वाहिद सूबो आहे जिते मकानी हुकूमतूं मौजूदु आहिनि। पिम्स इस्पताल इस्लामाबाद में पेश आयल वाकियो इंतिहाई दिल ॾारींदड़ आहे। मुल्क में इस्पतालनि जूं हालतूं बहितर करण जी ज़रूरत आहे।

0: कॉम्बिनेशन
1: गुलाम नबी मुगल 03-2-4-2-4-6-0-1-0-0
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा।
2: साईं अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में खोलियो त एफएम में रापर ते पब्लिसिटी करायो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी
2: दुकान जी बेड हलंदी
3: हां अदा कारोबारी इश्तियाल गिरा जी हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस बुधा
4: हालानी रोड में रापर।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब कुवैत के दिफा वाले वजीर शेख अब्दुल्ला अली अब्दुल्ला अल सलीम अल सबा की मुलाकात। आईएसपीआर चाहे तो मुलाकात दौरान गडल दिलचस्पी वाले मामलों इलाके सलामती और दिफाई सहकार से गालू कई हुई। बिन्हीं अगवाणों पारा भी तरफन लगापन दिफाई सहकार के मजबूत करने वालों अजम वरचा। कुवैती दिफा वाले वजीर शेख अब्दुल्ला की अगवाणी में ख्वाजा आसिफ से भी मुलाकात। पाकिस्तान ए कुवैत विच में दिफाई सहकार मजबूत करण लाए प्रोटोकॉल मुआदे 2026 ते सयूं। नए मुआदे तहत पाकिस्तान की हथियारबंद फौज कुवैत की हथियारबंद फौज के मुख्तलिफ शोबन में सहकार फराहम कदियों। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ है बिन्हीं मुल्क विच में थियल मुआदो गडल एतमाद एतराम ए गडल स्ट्रेटेजिक मफादन की अक्कासी करे तो।

0: वफाकी राजधानी इस्लामाबाद जी पीएमएस अस्पताल में पाए लगन वाले वाके जो जिम्मेवार केयर वफाकी हुकूमत वेडी पी 14 मासूम बारन जे सड़ी फोत थण वाले वाके जा जिम्मेवार जाहिर न किया साने जी जांच लाए जुड़ियल कमेटी जांच शुरू करे छड़ी अमले खान लिखत में बयान तलब सीसीटीवी फुटेज भी तहवील में वटी छड़ी कानून वाले वजीर सेनेटर आजम नजीर तर चवाए त जिंदगी जी का भी कीमत आए साने जी जांच बाद जिम्मेवार खिलाफ कार्रवाई थींदी सुभाणे ताईं शुरुआती रिपोर्ट अची वेंदी कौमी असेंबली की सेहत बाबत कमेटी पिम्स में एसी में पाए लगण वारन बयान के शकी करार दई छो पिम्स असेंबली के बयान में भी तसाद की दावा स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स पारा पिम्स जो दौरो बाहे वाके जा तफसील मालूम कया कमेटी चेयरमैन डॉक्टर महेश कुमार बुलाणी अमले के बयान में तसाद है आलिया कामरान अमले के बयान में लगी रो खेन रट्टो हणा वो है डॉक्टर शाजिया सोबिया अमले जा बयान मुतजाद आहिन लगे तो ड्यूटी ते मौजूद न हुआ
1: अपना क्या है सुबह की आवाज जो चाहेगी चेयरमैन गुलाम हो तो जगदारी साहब कह चुके हैं कि जो इस मुल्क की आवाज चाहेगी सिर्फ वो होगा मेरे आपके किसी और के कहने से काम है सिर्फ असेंबली छह दफा एक अहदाब पास और आखिरी समय भी फरवरी 2026 में बड़ी गिनती कर रहा था जिसमें अगर आपके फंड में जितनी मांग की सिंध के मानून जी पाकिस्तान की कुछ पार्टी कही है जो फिर करे तो ज्यादा सही असानी ताकत नहीं करना वधीक
0: कंहिं ख्वाहिश से कुछ न थींदो नवन सूबन बाबत जैके शोक है ठहराव आणे सिंध असेंबली छह पेरा सूबे के विरागे खिलाफ ठहराव पास कियो है सिंध जा मानू छा था चाहन खबर है सिंध जो अवाम जेको चाहिंदो उही थींदो मुंजी या अवां जी ख्वाहिश से कुछ न थींदो वडे वजीर

0: मातली शाजी इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ कोरंगी के दौरे दौरान मीडिया से गालबोल मातली शाह तो मकानी निजाम ए इदारन के पाख्तियार बनाने पीपल्स पार्टी जो मंशूर है। सिंध वाहिद सूबो है जिते मकानी हुकूमतू मौजूद हैं। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में पेश आयल वाक्यो इंतहाई दिल डारींदड़ है। मुल्क में अस्पताल जो हालतूँ बेहतर करने की जरूरत है।
1: Chief of Army Staff and Chief of Defence Forces Field Marshal Sayyid Asim Munir visited Tehran on 24th August as part of Pakistan's continuing diplomatic efforts to facilitate an end to the US-Iran conflict and renewed efforts for reopening the Strait of Hormuz. At claims by certain quarters that the Chief of Army Staff and the Chief of Defence Forces visited Iran as envoy of President Trump or the US are misleading and factually incorrect, as his visit was undertaken purely in the context and backdrop of Pakistan's ongoing role as a mediator.
0: Field Marshal jo Irani doro aman lai jari salasi varin question jo hisso ho दौरे के अमेरिका से गढ़ण वाली खबरों बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान ईरान जो व्यापार जारी है। एक तरफी पाबंदियों के अमल करने जा पाबंद नहीं पढ़ई तर्जुमन टायरस इंद्राबी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर ट्रंप के नुमाइंदे तौर तेहरान जो दौरो करने वाली खबरों के रद्द करते है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ए घरू वजीर मोहसिन नकवी जो ईरानी दौरो ठिकाण में घटताई वाली पाकिस्तानी कोशिशों को हिस्सों हो। पाकिस्तान रियासती सतह से अफगानिस्तान से गालियों करने लाए तैयार है। अफगानिस्तान के पेंजी सरजमीन पाकिस्तान खिलाफ इस्तेमाल करने के रोकनो पवंद। कतरी वजीर आजम ईरान के अहम दौरे से तेहरान पहुंची हो। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल अल सानी जो तेहरान पहुंचने से वही वजीर अब्बास राख चादर भाग गया। मुलाकात दौरान वितरफन लागापन समेत खत्े की सूरत से गालू कई हुई। कतरी वजीर आजम ईरानी सदर स्पीकर अस्करी क्यादत से मुलाकातू भी कंदो। अमेरिका ईरान विच में जारी छिकताण के खात्मे समेत खत्े की सूरत से गालू कई व्यों। अपने हरमुसी बहाली वो मामलो भी होर हेठ इंद। सिक्योरिटी फोर्सेस जो खैबर पख्तूनख्वा ए बलोचिस्तान में दहशतगर्दन खिलाफ़ कार्रवाई 11 दहशतगर्द मारजी वह। सिक्योरिटी जरियन मूजिब के पी के इलाके बन्नू में लाठा में 7 दहशतगर्दन के जहन भेड़ो किया। बलोचिस्तान के इलाके खुजार में ऑपरेशन दौरान 4 दहशतगर्द मारजी वह। दहशतगर्दन जो एक थाक भी तबाह बारूदी मवाद हथ। वजीर आजम शहबाज शरीफ पारा कामयाब ऑपरेशन से फोर्सेस के भेटा पेश। शहबाज शरीफ चाहे तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम फोर्सेस से गड बीठल है। बैरिस्टर सैयद इफ्तखार अली गिलानी की आजाद कश्मीर के वजीर आजम तौर नामजदगी नून लीग आजाद कश्मीर इख्तलाफन जो शिकार। राजा फारूक हैदर वट पार्टी के सीनियर अगवाणन जो इजलास। आजाद कश्मीर के नामजद वजीर आजम से खदशा जाहिर। राजा फारूक हैदर ए नून लीग आजाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर जो बैरिस्टर इफ्तखार गिलानी के वोट न देने का ऐलान। फारूक
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307359212।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज़ टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: मेहरान आयरन स्टोर, हालाणी। होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 ऐं 0242-460-1000।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर।

0: گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کے بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ بدن مردن ای عورتن میں وزن جو نہ بدن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کے بنے تو رابطے لے 0301-196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003385 69

0: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385 69।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुजे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर। राबते लाए मंसूर अमन मेमन, 03013808743।
4: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर। और मेहरापुर की आवाज जी FM 94।

जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: कुवैती दिफा वारे वजीर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात कई। बिन्हीं अगुवाणन पारा बेतरफन लागापन ए दिफाई सहकार के वधिक मजबूत करण वारे अज़म जो वर्जाओ। कुवैती वफद पारा खत्ते में अमन ए इस्तेहकाम जे क़याम लाए पाक फौज की कोशिशन जी सराहा।

0: वफाकी राजधानी इस्लामाबाद के पीएमसी अस्पताल में पाए लगने वाले वाकये जो जिम्मेवार केर वफाकी हुकूमत बेडी भी 14 मासूम बारन जी सड़ी फोत थियण वाले वाकये जा जिम्मेवार जाहिर न किया। सानिए की जांच लाए जोड़ियल कमेटी जांच शुरू करे छी। अमले का लिखित में बयान तलब, सीसीटीवी फुटेज भी तहवील में वी छी। कानून वाले वजीर सेनेटर आसम नजीरदार है जिंदगी की का भी कीमत ना सानिए की जांच बाद जिम्मेवार खिलाफ कार्रवाई थी। सुबाने ताई शुरुआती रिपोर्ट अची वी। कौमी असेंबली की सेहत बाबत कमेटी पिम्स में एसी में बाय लगन वन बयान के शक्की करार दई छो। पिम्स अमले के बयान में तजाद की दावा, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स पारा पिम्स जो दौरो, बाय वाक्य जा तफसील मालूम किया। कमेटी चेयरमैन डॉक्टर महेश कुमार मलानी है अमले के बयान में तजाद है। आलिया कामरान अमले के बयान में लगी रो है खेन रट्टो हणा वो है। डॉक्टर शाजिया सोबिया अमले जहा बयान तजाद है, लगे तो ड्यूटी ते मौजूद न हुआ।
1: हम कल देखेंगे असेंबली का व्यू अपना क्या है। सुबह की आवाम को चाहिए चेयरमैन गुलाम मसूद अंसारी साहब कह चुके हैं कि जो इस मुल्क की आवाम चाहेगी सिर्फ वो होगा मेरे आपके किसी और के कहने से काम आ सके। सिर्फ असेंबली 6 दफा एक अहदाब पास और आखिरी समय में फरवरी 2026 में जो गिनती करा था जिसमें अगर आपको पढ़ लें जितनी मांग की सिंध के मालूम जी पाकिस्तान की पुलिस पार्टी कही है जो तिर करे तो सुबह से ही ताकत नहीं था। मैं
0: कैंजी ख्वाहिश से कुछ नो नवन सूबन बाबत जैके शोक है ठहराव आने सिंध असेंबली 6 भेरा सूबे की विरागे खिलाफ ठहराव पास किया है। सिंध जहा मू चाहन खबर है सिंध जो अवाम जो चाहो उन्दो मुझे या अवान की ख्वाहिश से कुछ नो। वे वजीर बहादुर शाह इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ तौरंगी के दौरे दौरान मीडिया से गाल बोल बादल शाह मकानी निजाम इदारन के बख्तियार बढ़ान पीपल्स पार्टी जो मंशूर है। सिंध वाहिद सूबो है जिते मकानी हुकूमतू मौजूद हैं। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में पेश आयल वाक्यो इंतहाई दिल दारीदड़ है। मुल्क में अस्पताल जो हालतू बेहतर करने की जरूरत है।